الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله

उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे तो साफ साफ पैगाम पहुंचा देना है और बस। वो बोले कि हम तुमको अपने लिए मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है, क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई? नहीं, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज कर गए हो। और शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, पैगंबरों के पीछे चलो, ऐसों के जो तुमसे सिला नहीं मांगते और वो सीधे रास्ते पर हैं, और मैं क्यों उस जात की परस्तिश ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
3: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है. इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ. बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो. आज ही 111 475

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94
5: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
6: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
7: Paanje lai nawa kasat. Par jade amn ji jaye te gor gamsan ai afra tafri jo jahan hundo ta utte tarakki namumkin banji wane thi. Tain kare amn ji ahmiyat ke samjhande amn je mahol ke hathi watan lai November 1981 ईस्वी में जनरल असेंबली में एक करारदाद वसीले हर साल सेप्टेंबर के 3 अंगारे ते अमन जो आलमी ॾींहुं करे मल्हण जो फ़ैसिलो कयो वियो जंहिं वसीले हुकूमतनि ऐं क़ौमुनि जे विच में अमन जो तसवरनि खे मज़बूत बणाइण ते ख़ासि तवजो ॾियणु आहे असां मुंहिंजा कोशिशि कयूं पाण पंहिंजे मुल्क में अमन लाइ दुआ घुरूं ॿियनि पाड़ेसरी मुल्कनि मुस्लमान मुल्कनि लाइ दुआऊं घुराऊं त अमन थिए जंगियूं ख़तमु थियनि ऐं जेके पंहिंजे इलाइक़नि में पंहिंजे पाड़नि में पंहिंजे शहरनि में पंहिंजे ॻोठनि में जेकॾहिं को गोड़ गमसान आहे त उन में कोशिशि कयूं त पंहिंजा गॾिजी करे मौज़ूज़ माण्हू उन जा ठाह करायूं ऐं अमन करायूं

जी एसएमएन प्रोग्राम रोशन सुबह में अवां के सवाल नोट कराइंदासी त असां जो जेको अॼु जो सवाल आहे उहो सवाल इहो आहे त कराची खां याने हैदराबाद जामशोरे ताईं रोड जो पुराणो नालो कहिड़ो हुयो ऐं हिन वक़्तु हुन नओं नालो कहिड़ो आहे। जी हा, सवाल तमामु आसान आहे, कंहिं खां पुछा ॻछा करे सघो था ऐं मालूमात पहिरीं प्यारनि दोस्तनि खां वठी सघो था।

असांजो अॼु जो सवालु आहे कराची खां जामशोरो हैदराबाद ताईं जेको रोड आहे उन जो पुराणो नालो कहिड़ो हुयो ऐं नओं नालो कहिड़ो आहे। तव्हां असांखे सवाल जो सही जवाबु SMS ज़रिए मोकिले सघो था। असां वटि SMS करण जो आसान तरीक़ो आहे तमामु, जेके दोस्त प्रोग्राम हाणे हाणे ॿुधनि पिया या जेके जिन रेडियो खे जॉइन कयो आहे पहिरियों दफ़ो, त असां हुनखे ॿुधाईंदासीं। मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो, राइट ऑप्शन में वञी करे LRK लिखी, यानी लाड़काना LRK स्पेस ॾेई पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ नालो लिखी करे तव्हां पंहिंजो सवाल जो सही जवाबु सेंड कंदव 888 ते। तव्हां असांजे फेसबुक जे ID ते बि सवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था। असांजी ID आहे GFM88 जो जेको फेसबुक जो पेज आहे, तव्हां उन ते बि असांजे पंहिंजो सवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था। ऐं फिक्स 10 बजे असांजे स्टूडियो में मोबाइल आन थींदी, तव्हां उन ते बि पंहिंजो सवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था। असांजो नंबर आहे 0332-13228, नंबर तमामु आसान आहे 0332-13228। असांजो सवाल इहो आहे त कराची खां जामशोरो यानी हैदराबाद ताईं रोड जो पुराणो नालो कहिड़ो हुयो ऐं हिन वक़्तु नओं नालो कहिड़ो आहे। समझा ॿार, नंढड़ा ॿार, ॼावल ॿार जेके आहिनि अलाह ताला जो तोहफ़ो हूंदा आहिनि ऐं हर शादीशुदा जोड़ो औलाद बिना अधूरो हूंदो आहे। ॿार नाज़ुक गुल आहे ऐं ॿारनि सां हर कोई प्यारु कंदो आहे ऐं हर माइटु चाहींदो आहे त हुन जो औलाद साबरीन ऐं ज़हीन इख़लाक वारो ऐं सुठे कम में होशियारु हुजे। काफ़ी हंधनि ते ॾिठो आहे त ॿार जी तरबियत थोरी घटि कई वेंदी आहे, किथे वधीक कई वेंदी आहे। कुझु ॿारनि में सलाहियतूं घणियूं हूंदियूं आहिनि, कुझु घटि हूंदियूं आहिनि, पर असां ॻाल्हि कंदासीं त जेको ॿारनि सां प्यारु आहे ऐं ॿार तमामु जेको आहे सो प्यार वारे सां वधीक पंहिंजो चाहींदो आहे, प्यारु कंदो आहे। ऐं असां ॾिसूं था त किथे कंहिंखे औलाद आहे, कंहिंखे नाहे, ऐं कंहिंखे वीचारनि खे औलाद ॼमी करे वफ़ात करे वञे थी, पर असांजूं हमेशह सभिनी शादीशुदा जुड़नि लाइ दुआऊं हूंदियूं त अलाह साईं उनखे पंहिंजी औलाद सां झोली भरे ऐं उन जे हमेशह दिलनि मां, उन्हनि जी ज़बान मां सुठी दुआ निकिरंदी। ॿार ॼमनि, हुनखे ख़ुशियूं अथनि, हुनजी औलाद हुनजी ख़िदमत कंदी, पर असांजो बि हमेशह सभिनी शादीशुदा जुड़नि लाइ अलाह साईं उनखे औलाद सां नवाज़ी।

जीअं सभिनि प्रोग्राम रोशन सुबुह में असांजो सुवालु तमामु आसान आहे, उमेदु तव्हां नोट कंदो। असांजो सुवालु आहे कराची खां जामशोर हैदराबाद ताईं जेको रोड आहे उनजो पुराणो नालो कहिड़ो हुयो ऐं हिन वक़्तु उनजो नओं नालो कहिड़ो आहे। जी हा, त सभिनि तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु 11 वॻे ताईं। हिन वक़्तु असां हलंदासीं न्यूज़ ब्रेक ऐं कमर्शल ब्रेक जी तरफ़, वरी वापसि ईंदासीं। कॾहिं महिरबानी।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: पाकिस्तान खिलाफ दहशतगर्दी अला इस्तेमाल न थी।

हुकूमत महांगाई सड़ियल अवाम मथां हिकु वधीक पेट्रोल बम किराए छॾियो। पेट्रोल 4 रुपया 10 पैसा महांगो, डीज़ल फी लीटर अघ में 6 रुपया 41 पैसा वाधि कई वई। पेट्रोल जो फी लीटर अघु 384 रुपया

हुकूमत पारां पेट्रोल ते अवाम खे ॾिनल रिलीफ टैक्स खां वधीक लेवी 80 रुपया आहे। वज़ीर आज़म 100 रुपयनि जो रिलीफ ॾिनो आहे। वफ़ाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक चयो आहे त मुल्क वॾनि गाॾियुनि वारनि जो बि आहे, पर वज़ीर आज़म सभ खां पहिरीं नंढनि गाॾियुनि वारनि खे रिलीफ ॾिनो आहे। पेट्रोल ते रिलीफ वारी स्कीम इस्लामाबाद में शुरू थी वई आहे, ॿिए मुल्क में बि जल्द शुरू थी वेंदी। वज़ीर आज़म जेको पेट्रोल ते रिलीफ ॾिनो आहे उहो टैक्स खां वधीक आहे। जंग ख़तम थियण सां समूरी दुनिया खे रिलीफ मिलंदो।

भान सैदाबाद में लकी वेजो कार कल्टी व पुलिस सरकार फोत व जख्मी एंड हाईवे तेज शाहीन फोर्स के इंचार्ज की कार कल्टी थी खाई में किरी पई। पुलिस सहलकार गुलाम मुस्तफा पवन जावेद दिलवाणी फोत थी व्या। शाहीन फोर्स जो इंचार्ज जमान पवन सनाउला बिरोही जख्मी थी।

0: काजी अहमद वेझो बिन ट्रालन के टक्कर बाद बाहि लगी वही। एक ड्राइवर सड़ी फोत संदस भाव जख्मी। कौमी टोल प्लाजा वट बिन ट्रालन में टक्कर। एक ट्रालर के बाहि लगी वही। मियांवाली वासी ट्रालर ड्राइवर मंजूर गांगो फोत थी वो। संदस भाव इफ्तखार जख्मी। फायर ब्रिगेड की मदद से बाहि विसाए लाश है जख्मी के कढ़ो वो। पुलिस मौजूद पंजाब वींदड़ ट्रालर अग्न वींदड़ ट्रालर से पोया का टकराज वो जै बाद ट्रालर के बाहि लगी वही।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था। पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो। छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 310509, 0300 310509।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और

0: अक्सर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

जी समय प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां मां मेज़बान नेमतुल्लाह जुमे जो समय असांजो अॼु जो सवाल आहे त कराची खां जाम शोरो ताईं रोड जो पुराणो नालो कहिड़ो हुयो ऐं हाणे नओं नालो कहिड़ो आहे। असांजे दोस्तनि खे इहा गुज़ारिश आहे त ॿिया ॿिया रोडनि जा नाला न खणो, ॿियनि ॻोठनि जा नाला न खणो। मां कराची खां जाम शोरे हैदराबाद ताईं रोड नालो पुछियो आहे त पुराणो नालो ऐं नओं नालो कहिड़ो आहे। तव्हां असांखे सही सवाल जो जवाबु असांखे मोकिले सघो था मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी करे एस एम एस ज़रिए सवाल जो सही जवाबु मोकिलींदा। एल आर के लिखी स्पेस ॾेई पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ नालो लिखी करे 888 ते तव्हां असांजे सेंड करे सघो था। फेसबुक ते बि सवाल जो सही जवाबु असांखे मोकिले सघो था। असांजी आई डी आहे GFM88 ऐं तव्हां असांजे कॉल करे बि तव्हां असांखे सवाल जो सही जवाबु नोट कराए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332-1322-88। साईं मुंहिंजा मारुवड़ा, झांगीअड़ा, सांगीअड़ा उहे हूंदा आहिनि जेके पंहिंजे ॿनी ॿारे जे कम में सॼो ॾींहुं महिनत कंदा आहिनि ऐं उहे मारुवड़ा जेके माल चाढ़ींदा आहिनि, मेंहूं चाढ़ींदा आहिनि, ॿकरियूं चाढ़ींदा आहिनि, सॼो ॾींहुं उनखे पाणी जी गुघी साण हूंदी आहे ऐं मानी पंहिंजे कंहिं रुमाल जी ॻंढड़ीअ में मानड़ी ॿधलु हूंदी आहे ऐं उहो लठ खणी ऐं मथड़े सां रुमाल ॿधी या अंगोशे जो थोरो पटको पाए जेके निकिरंदा आहिनि सॼो ॾींहुं माल सां झुंगारींदा बि आहिनि। के बीनू वॼाईंदा आहिनि, के चंग वॼाईंदा आहिनि, के सुरंदा वॼाईंदा आहिनि, के गुजारतूं ॾींदा आहिनि। बहरहाल पंहिंजो जेको सॼे ॾींहं जो जेको टाइम आहे, वक़्तु आहे, सफ़र आहे, उहो हिक ॿिए सां कचहरी कंदे बि गुज़ारींदा आहिनि। उहे असांजा मारवाड़ा जेके पंहिंजो थर जे इलाइक़े में तमामु हिन वक़्तु त बरसातुनि जो सिलसिलो बि एॾे ते थर जे इलाइक़े में आहे, जारी आहे मीरपुर ख़ासि जे पासे ॾे, त उते हिन वक़्तु जेके बि वारीअ जा दड़ा आहिनि, वारी जूं भिटूं आहिनि, उते उहे इलाइक़ा सरसब्ज़ आहिनि ऐं माल जो जेको चारो आहे उहो बहितरीनु आहे। उतां जा फसल, उतां जूं पोखूं हिकिड़ियूं सिंध जे हवाले सां निरालियूं आहिनि, अलॻि आहिनि, त उते कहिड़ा कहिड़ा फसल थियनि था। ऐं असांजे मीरपुर ख़ासि डिवीज़न खां अलावा हैदराबाद डिवीज़न आहे, कराची डिवीज़न आहे, लाड़काणो, सखर, नवाबशाह डिवीज़न में कहिड़ा कहिड़ा फसल थियनि पिया ऐं किथे किथे कहिड़ा थियनि पिया। बहरहाल असांजा जेके मारुवड़ आहिनि, असांजा जेके सांगीअड़ा आहिनि, असांजा जेके बाझारड़ा ऐं निमाणा आहिनि, उहे तमामु घणी महिनत कनि पिया। उहे महिनत कनि पिया माल जी, त असां उन जे हवाले सां गोश्त बि खाऊं पिया, असांखे खीर बि हिकिड़ो मुहैया थिए पियो जेको असांजे जिस्म लाइ, असांजे हॾ लाइ ताक़तवर आहे, जंहिंमें कैल्शियम आहे। पर जेके असांजा मारवाड़ा, झांगीअड़ा असांजा फसल तयारु पिया कनि, बाग बाग़ीचा पोखनि पिया ऐं उन में जेकॾहिं असांजा मेवात थियनि पिया त उहे असां मेवा खाऊं पिया ऐं असांजा फसल जेके थियनि पिया उन में असां अनाज खाऊं पिया। इहा उन्हनि मारुड़नि जी महिनत आहे ऐं असांजो ॿाकिरो माल आहे, माहियो माल आहे, रेढो माल आहे, जंहिंजो असां गोश्त बि खाऊं पिया, मच्छी बि खाऊं पिया ऐं सब्ज़ियूं बि खाऊं पिया, अनाज बि खाऊं पिया। इहा सॼी जेका महिनत आहे, इहा जेका सॼी जुस्तजू आहे ऐं जेको सॼो जिस्म उन्हनि जो पघर वारो आहे उहो असांजे मारुड़नि जो आहे, सांगीअड़नि जो आहे। भले तव्हां उनखे भलनि बंगुलनि में विहारियो ऐं सुठनि महलनि में विहारियो, पर जेके हुनखे वणंदड़ आहिनि उहे पंहिंजा झूपड़ा आहिनि, उहे हुनजा चौंरा आहिनि, उहे हुन जूं कचियूं कोठियूं आहिनि जिन में हुनखे मज़ो ईंदो आहे।

जी हाँ समय प्रोग्राम रोशन सुबह में असो अज जो सवाल है सवाल तमाम आसान है त कराची का जामशोर हैदराबाद तीन जो रोड है उन पुराणो नालो कड़ो हो वक्त उन नो नालो कड़ो है सवाल तमाम आसान है तुम असें एस एम एस जरिए बुधा सोता तुम फेसबुक जरिए भी असके बुधा सोता मोबाइल नंबर से भी कॉल कर सवाल जो जवाब नोट करा सो नंबर है 0332 1322 88।

0: It's 10:30 AM. This time check.
1: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहिन उन्हनि जी जरूरत आहे
2: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार 50 सालन खां आज़मायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन खां
3: सलराज डी स्कीम हिन विटामिन ई बीड्स माइकाई निकरी सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुझ हर डीए जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे बारनि खे पोलियो खां बचाव जा बकतरा ज़रूर पियारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफ़ती ताकत के वधाइन था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी
5: जा उम्मीद के दिए जलते हैं
6: रोशनी का काफ़िला मंज़िल की तरफ गामज़न मज़हर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मज़हर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मज़ीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन डायरेक्टर मज़हर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मज़हर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम

जो छाल दई बच जे खिवण के बाह बथो हो ओ न थो सिरे सुगंध साह में होयो गोद में गुलशन जिगर तनूर कतो हो ओ न थो।

जी हा समय प्रोग्राम रोशन सुबह बुध पे जी एफ एम 88 के नेटवर्क त मामा जो मेज़बान ने मतलब जुने जो साईं मुंहिंजा हुसन अहिड़ी ज़ात आहे जंहिंखे हर कोई पसंदि करे थो पोइ उन जी उमिरि केतिरी बि छो न हुजे भला हुसन खे छो न पसंदि कबो चवंदा आहिनि त जंहिंजो अंदरि हसीन हूंदो आहे उहो हुसन खे पसंदि कंदो आहे ऐं साईं हुसन आहे छा हर माण्हूअ जे अखि जी अलॻि अलॻि परख आहे ऐं तहक़ीक़ी ज़रिए इहा ॼाण हासिलु कई वई आहे त ॿारड़ा पैदाश खां वठी हुसन परस थियनि था जंहिंजे करे संदन ख़ूबसूरत शिकिलनि ॾांहुं वधीक लाड़ो हूंदो अथनि ऐं अहिड़ी कयल तहक़ीक़ मां उन ॻाल्हि जी ॼाण बि हासिलु कई वई आहे त ॿारड़ा बि आम माण्हुनि जीअं हुसन परस्त हूंदा आहिनि नफ़्सात जे माहिरनि जो चवणु आहे त तव्हां ॿारनि लाइ तमामु घणियूं शयूं या शिकिलियूं ॾेखारियो पर ॿारड़ा सिर्फ़ु उन दिलि खे वणंदड़ शिकिलनि खे शयुनि खे पसंदि कंदा ऐं उन्हनि जे तरफ़ ई झुकंदा जंहिंखे जेके सुहिणा हूंदा उन्हनि खे उहा ॻाल्हि वणंदी ऐं उहे सुहिणियूं शयूं हूंदियूं सुहिणियूं तस्वीरूं हूंदियूं त ॿारड़ा बि उन्हनि खे ई सुञाणींदा ऐं उन्हनि खे सुञण जी सलाहु बि रखंदा त हसीन शइ अहिड़ी आहे हुसन अहिड़ो आहे जंहिंखे ॿारड़ा बि पसंदि कनि था पर हुसन वारी शइ हर कंहिंखे वणंदी आहे।

जी साईं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह में असीं अव्हां खे सवाल नोट करायोसीं त कराची खां हैदराबाद जामशोर वारो जेको रोड आहे उन जो नालो पहिरियां कहिड़ो हो, पुराणो नालो ऐं हिन वक़्तु नओं नालो कहिड़ो आहे? त साईं मुंहिंजा इन जो सही जवाबु आहे कराची खां जामशोर ताईं पुराणो नालो सुपर हाईवे हुयो ऐं हिन वक़्तु M9 मोटर हाईवे रोड जो नालो आहे। इहो सवाल जो सही जवाबु तक़रीबन दोस्तनि सवाल जो सही जवाबु नोट करायो ऐं असां हुननि जा नाला खणंदासीं। इन में असां पहिरियों नंबर ऐं आख़िरी नंबर कोन रखियो आहे हिन दफ़े ऐं असां पंहिंजो सवाल जो सही जवाब ते सभिनी दोस्तनि जा नाला शामिल कंदासीं। दोस्तनि जी वॾी महिरबानी जिन असांजो ॿिनि कलाकनि ताईं साथ ॾिनो ऐं असांजे प्रोग्राम खे ॿुधो ऐं असांजी खोजना करे महिनत करे जुस्तजू करे सवाल जो सही जवाब ॾिनो आहे। यार मोहम्मद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फ़क़ीर एजाज़ अली कलोड़ो ऐं नारा स्टॉप सब्ज़ी मंडी सखर खां एजाज़ अली जूणी जो ऐं ॻोठ मोहम्मद क़ासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो, ॻोठ हसू जतोइन खां मोहम्मद मूसा जतोई ऐं ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर, ॻोठ मोलिड़ माशी खां ज़मीर हुसैन सोलंगी ऐं असांजा दोस्त आहिनि आसिफ अली बुगटी, आसिफ अली चाचड़ ऐं वासिफ अली बुगटी लाड़काणे खां, इक़बाल खुहारो लाड़काणे खां, यासमीन मलिक मीरपुर ख़ासि खां, अब्दुरहमान लिगारी लटको मोरी खां, कंधकोट ATC कोरट खां, जलालदीन भंगवार अदब हुसैन सोरियाणी बि असांखे सवाल जो सही जवाबु ॾिनो। हुननि यादि कयो, हुनजी वॾी महिरबानी। रांझन कोरी ॻोठ मीरपुर ख़ासि खां, ख़ालिक लाशारी ऐं इक़बाल लाशारी झलोरी मीरपुर ख़ासि खां, अहसान अली बुगटी ॻोठ रोहल बुगटी लाड़काणे खां, रुस्तम अली पहंवर ॻोठ पुनू खान पहंवर सेवण खां, मोहम्मद शरीफ़ छुटो दरेजी बलोचिस्तान खां, महरम अली जतोई ॻोठ आगा खान जतोई खां, फ़तेह मोहन सुमरो, फ़तेह मोहम्मद कनासरो ॻोठ सराई मोहम्मद नवाज़ धूण खां। दोस्तनि जी वॾी महिरबानी ऐं साईं मुंहिंजा सवाल जो सही जवाबु ॾिनो आहे ॻोठ मसूहब खां डॉक्टर ज़मीर हुसैन मीराणी, साईं तारिक हुसैन मीराणी नौंदरो चौक लाड़काणे खां डॉक्टर शहज़ाद अज़ीज़ सुमरो, रियाज़ हुसैन कलोड़ो ॻोठ फाज़िल कलोड़े खां ऐं हाफिज़ ग़ुलाम मोहम्मद सांभल शहर नसीराबाद खां, अब्दुल मजीद बुगटी बि असांजे काल पंहिंजो फेसबुक ते मैसेज कयो, बरकत अली जमाली आहे बलोचिस्तान खां, मोहम्मद खान कुंभार हालेपुटा स्टाप मीरपुर ख़ासि खां, अज़ीज़ सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां, क़ुर्बान अली ख़ासकेली अज़ीज़ सोलंगी क़ुर्बान ख़ासकेली झंडे मरी खां। दोस्तनि जी वॾी महिरबानी, लख क़ुर्ब ऐं जेको हीउ कलाम आहे आख़िरि में अव्हां सभिनी दोस्तनि जी नाम पिया कयूं।

जी हा साईं, मुंहिंजा इहा हक़ीक़त आहे त मिठो अंगूर आहे मुंहिंजो जानी, हुसन में ज़ोर आहे मुंहिंजो जानी। फरज़ाना परवीन जे इन ख़ूबसूरत नगमे ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते। हयाती बख़ैर इनशाला अवां सां मुलाक़ात ज़रूरु थींदी नए सवाल सां। तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान नेमत अलाह जुड़ण जो ॾींदा इजाज़त। अलाह निगाहबान।

0: Il est américain. It's 11 AM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: डिनल इंटरव्यू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो आहे त कंहिं बि मुल्क खिलाफ़ असांजा इरादा जाराणा न आहिनि. दिफ़ाई सलाहियतनि ते भरोसो आहे. दिफ़ा करण सां गॾु सज़ा ॾियण जी बि सघ रखूं था. अफ़गानिस्तान बाबति बि मौक़िफ़ वाज़े आहे. अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमाल न थियणु घुर्जे. हुसीन जूं सऊदी अरब ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी. सऊदी अरब पारां फिज़ाई हदनि में दाख़िल थींदड़ ड्रोन तबाह करण जी दावा. सऊदी फौजी एताब जो चवण आहे त यमनी हुसीन जो ड्रोन खे मके जी फिज़ाई हद कयो वियो. पाकिस्तान पारां सऊदी अरब ते हुसैन जे हमलनि जी मज़म्मत. गॾियल क़ौमनि में पाकिस्तान जे नुमाइंदे आसिम इफ़्तिखार चयो त पाकिस्तान सऊदी अरब जी ख़ुदमुख़्तियारीअ जो हामी आहे. हुसैन जा हमला इलाक़ाई अमुन ऐं इस्तेहकाम में ख़तरो आहिनि. अमेरिकी कांग्रेस ईरान जंग जे ख़ात्मे बाबति ठहराउ टियों भेरो बि मंज़ूर करे वरितो. ठहराउ जी हिमायत में 220 वोट पिया, 204 मुखालफ़त वोट कयो. सदर ट्रंप जे रिपब्लिकन पार्टीअ जे 7 मेंबर्स बि ठहराउ जी हिमायत कई. ईरान ख़िलाफ़ वधीक कार्रवाई रोकण वारो ठहराउ टियों भेरो अमेरिकी कांग्रेस मंज़ूर कयो आहे.

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाओ जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
1: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी, खुदा पोलियो रंज दा कदमुनो द्रवले हुमशी। नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई, अखबल माशुमानो ता द पोलियो द मखनीवी द्वसास की वरकवल महेरवई, जकच हम द गसास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यादवी और द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटरी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592-120

0: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Har bar ja nandra kadam ik nayi duniya da vadhan ta, par polio inan kadman ke roke bhi sage tho. इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
5: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

मके दिफाई मुआदो जाराणो न पर दिफाई नोत जो आहे दिफाई वाइदन जा ऑपरेशनल तफ़सील अवामी सतह ते नाहिन बुधाया वेंद बाबत फैसलो डि॒नी मुल्कन जी क़यादत कंदी अरब टीवी खे डि॒नल इंटरव्यू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो आहे त कंहिं बि मुल्क ख़िलाफ़ असांजा इरादा जाराणा नाहिनि दिफ़ाई सलाहियतुनि ते भरोसो आहे दिफ़ा करण सां गॾु सज़ा ॾियण जी बि सघ रखूं था अफ़गानिस्तान बाबति बि मौक़िफ़ वाज़े आहे अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमाल न थियणु घुर्जे हुसिन जूं सऊदी अरब ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी सऊदी अरब पारां फिज़ाई हदनि में दाख़िल थींदड़ ड्रोन तबाह करण जी दावा सऊदी फ़ौजी इतिहाद जो चवणु आहे त यमनी हुसिन जे ड्रोन खे मके जे फिज़ाई हदनि में तबाह कयो वियो हुसिन पारां मके ते हमले वारे इल्ज़ाम जी तरदीद अमेरिकी कांग्रेस ईरान जे ख़ात्मे बाबति फहिराउ टियों भेरो बि मंज़ूर करे वरितो में 220 वोट पया 204 मुखालफत में वोट कयो सदर ट्रंप जी रिपब्लिक पार्टीअ जे 7 मेंबर्स बि ठहराउ जी हिमायत कई ईरान ख़िलाफ़ वधीक कार्रवाई रोकण वारो ठहराउ टियों भेरो अमेरिकी कांग्रेस मंज़ूर कयो आहे ईरान जंग जल्द नए मरहले में दाखिल थी वेंदी अमेरिकी नायब सदर जेरी विन चयो आहे त ईरान जंग जो पहिरियों मरहलो ईरानी एटमी प्रोग्राम ऐं फ़ौज जी तबाही हो जेको मुकमिल करे छॾियो आहे बियो मरहले ईरान खे बहालीअ खां रोकण वारो आहे जंहिं ते अमल कयो वेंदो खिते जे मुल्की पारां पंहिंजे मुस्तक़बिल बाबति फ़ैसिलो करण वारे हक़ जी हिमायत कयूं था चीनी फ़ौज इलाइक़े लाइ समूरनि धुरियुनि सां गॾिजी कम करण लाइ तयार आहे चीन जे दिफ़ा वारे वज़ीर चयो आहे त चीन ॾियारींदड़ कार्रवाईनि जी कंहिंखे बि इजाज़त न हुअणु घुर्जे फ़ौजी ताक़त सां मसला हल नाहिनि था थी सघनि

0: नौशेरो फिरोज में हाजिरी ते अदालत वेंदड़ शख्स कतल रोड़ी के नाल पुल वट हथियार बंदन मोहम्मद मिठल वंशे के गोली हणी कतल कयो। पुलिस मूजिब मकतूल गोट पीर वतो जो रहवासी आए। मामलो पुराने तकरार जो लगी रो है। वाकई की वधीक जांच कई पई वे। खिपरो वेझो जरदारी फार्म वटा नामालूम शख्स जो गोली लगल लाश हथायो है। सुणप नी सी है। गोठन के इतला से पुलिस लाश अस्पताल मुंतकिल कर। पुलिस मूजिब वधीक जांच कर रहा है। नगर पार्कर भरसा नारी ए नौजवान जा वण में टंगल लाश हथ गोठ सोराचंद में किर्शन ए नारी मरवा कोली जा वण में टंगल लाश मिले आन। इलाके में चोबो लाइन नारी ए नौजवान एक बे के पसंद कंदा हुआ। परणो न थियण सबब गर्जी आपघात कयो है। पुलिस लाश जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले कर छिया।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवर जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करयो
1: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो निवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रंस दा कदमुनो द्रवले हुमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई अखबल माशुमानो ता द पोलियो द मखनिवी द्वसास की वरकवल महेरवई जकच हम द गसास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजर मुमी पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000310509 03000310509

0: मिले थी मोटरसाइकिल थी कार कर देगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिये थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003।
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03008 5569।
2: अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नौ दुकान खोलियो तुम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94।

0: सोनी अज त ॾाढी ख़ुशि थी लॻे।
1: हा साईं, ॻाल्हि बि अहिड़ी आहे।
0: भला मूंखे बि ॿुधाए कहिड़ी ॻाल्हि आहे।
1: चाचे, जुम्मन जी खु़शहाली जो राज़ ख़बर पियो आहे।
0: छा छा?
1: उहे पंहिंजे ढोरनि खे जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइनि। हीअ चारो ढोरनि जो हाज़मो दुरुस्त करे थो, ढोर सिहतमंद थियनि था, गोश्त सां गॾो गॾु खीर बि वधे थो।
0: वाह सोनी, वाह वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई। पर किथे मिलंदो इहो जी जान सखर चारो मसालो?
1: साईं, रेडीअ ते था ॿुधाइनि। ॿुध ऐं अची वठी अच।
0: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
1: हा साईं, हा।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: घर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दे नवी दुनिया पलोर रवानवी। خود پولیو رنز دا قدمونه درولی همشی نو پا دی وجه دا پولیو دا هر مهم پا محال دا پولیو تیم دا دروازی تکولو جواب ورکوی او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول ماهی روی زکه چه هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی تا کز زیادوی او دا حقی دا خوبون و الوت وزری مومی پولیو یعنی مستقل مازوری
5: खबरी। क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
6: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
7: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
8: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तियाब आई।
7: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
8: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372 आई 0242-460100।
9: خوش خبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودھن پوٹا پیٹرول پمپ، کوٹری کبیر روڈ مہراپور، کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر۔

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी ए मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग.
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94.

0: नगर पारकर भरसा नारी है नौजवान जा वन में टंगे लाश हथाया है गोठ सोराचंद में किर्श है नारी मरवा कोली जा वन में टंगे लाश मिला है इलाके में जो बोला है नारी है नौजवान एक बे के पसंद कदा होया परणो न थे सबब गर्जी आपघात किया है पुलिस लाश अधिकार बाद वारस हवाले कर छाया देरके मां डह डी अग मुबैना तौर अगवा थे 14 वर की नारी पंजाब मां बाजियाब मंजूरा खोसो के देरकी पुलिस पंजाब के सादकाबाद मां बाजियाब करायो मंजूरा खोसो असलम कोश समेत जवाबदार हथियार के जोर ते खेस अगवा कयो पुलिस मौजूद वाके में मुलविज जवाबदार के जल्द गिरफ्तार कयो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर KTN News।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था। पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000310509 03003105109।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और

0: पूरी ग्लो जल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट, आईमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आए। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाई, आसिम हुसैन आराई।
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

ये क्या चीज हो सकती है जिसके दांत तो बहुत है लेकिन वो खा नहीं सकती। तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो जनाब तरीकेकार बहुत ज्यादा आसान है। अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस, दीजिए अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक पर सुनने वाले हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 के पेज पर आइए, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। इससे ये होगा कि बहुत सारे लोगों तक हमारा प्रोग्राम पहुंच जाएगा और बहुत सारे लोग जो है ना वो जान जाएंगे कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम उनकी स्किन के लिए कितनी और क्यों जरूरी है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में भी थोड़ी सी मालूम आप लोगों को होनी चाहिए, थोड़ी सी क्या मतलब बहुत ज्यादा वाली मालूम होनी चाहिए कि अगर आप मार्केट चले जाएं तो बस आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेज करके आएंगे, क्योंकि कई मरतबा ऐसा भी हो जाता है कि जब आपके करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल नहीं होगी तो दुकानदार बोलेगा भाई साहब कुछ और ले जाएं, कोई दूसरा प्रोडक्ट ले जाएं, ये ज्यादा अच्छा है, इसका ज्यादा आजकल चर्चा है। तो आपने उसे बोलना है भाई साहब थांबा थांबा, हम सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेज करने आए हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेज करके जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो जनाब जल्दी से परचेज कीजिए, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना ये अगर आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल नहीं है तो जल्दी से अवेलेबल कराइए और डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुरी ट्रेसो बारह पंजाह पंचवीह 970 एम यो नंबर आ 033-27-38-43-09 बुरी ट्रेसो बटरी है 73-84-309 ही नंबर साइन जेके डायल करी तां पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराई सको था। सो अवेलेबल करायो, पांजे खूबसूरती जो ख्याल रखो, हमेशा हमेशा जिला खूबसूरत ही वनो, छो तो खूबसूरती हासिल करण अजकल डाडी आसान थी वई है, तमाम भी बाबा उनमा फायदो हासिल करियो एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश जो इस्तेमाल कंदा रहो, ठीक आहे। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन के लिए जो है ना वो बहुत सारे फायदे लेकर आई है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक 2-in-1 फार्मूला है। 2-in-1 फार्मूला मतलब अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिजल्ट जो मिलने वाले हैं वो नेक्स्ट लेवल वाले मिलने वाले हैं, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीड्स हैं और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है, तो आपकी स्किन के अंदर जो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं ना वो इतने अच्छे मिलेंगे कि आपको लगेगा कि भाई आप बहुत अच्छा कोई महंगा सा फेशियल करा के आए हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये सारी क्वालिटीज मौजूद हैं कि आपके चेहरे को एकदम से खूबसूरत बना दे, प्यारा बना दे और पुरकशिश भी बना दे। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये भी खास बात है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है, तो घबराने की और टेंशन करने की तो कोई बात है ही नहीं कि भाई हमारी स्किन सेंसिटिव है, हमारी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप है, हम नहीं लगा पाते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरती का ख्याल रखिए और जनाब मुझे बताइए कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है और कहाँ कहाँ पर अवेलेबल करानी बाकी रहती है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। और अब तो भाई मार्केट में डी स्किन का फेस वॉश भी आ चुका है, फेस वॉश ने भी एंट्रियां मार ली है, तो वो भी आप परचेज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा, क्योंकि फेस वॉश जो है ना वो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लोगों के एक ना ऐसा ड्रीम होता है कि भाई हम भी अच्छा सा कोई फेस वॉश इस्तेमाल करें ताकि हमारी जो खूबसूरती है ना वो भी जरा अच्छे से निखर कर सामने आ जाए, क्योंकि कई मरतबा हम इन चीजों को समझ नहीं पाते कि कौन सी चीजें हमारी स्किन के लिए बेहतर है और कौन सी चीजें हमें अपनी जिंदगी में अवॉइड करनी चाहिए। तो यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश आप बिल्कुल लगा सकते हैं, हाँ जी फुल मोकल आ तवां के, सो लगाईंदा रहो ये साके बुधाईंदा रहो तो तवां किथे किथे अप्लाई कई आहे, अच्छा किथे किथे अवेलेबल कराई आहे ऐं तवां अप्लाई कई आहे या फिर कोन, अच्छा सवाल जेको पुछो आ न सवाल जो तवां मूंखे जवाब ॾींदा हलो ऐं जल्दी जल्दी असांजे प्रोग्राम जो हिसो थींदा हलो। जिन माण्हुनि हाणे ज्वाइन कयो आहे हुननि खे ॿुधाईंदासीं बाबा टॉपिक अॼु जे प्रोग्राम जो इहो पुछो आहे, तव्हां मूंखे ॿुधायो उहा कहिड़ी शइ आहे जंहिंखे ॾंद त इलाही सारा आहिनि पर उहा कुझु खाई नाहे सघंदी, हां जी। और इसी के साथ साथ यहां पर हमारे साथ फरवा गुल मौजूद है, कहती है अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, हाय आप या कैसी हैं, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, बहुत शुक्रिया जी, आपको भी वेलकम। कहते हैं नजीर खोसो हमारे प्रोग्राम में बलूचिस्तान से ज्वाइन कर चुके हैं, कहते कि किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश ना छोड़ो, अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार है ही नहीं बल्कि वो जरूरत का पुजारी है।
हाँ जी आप सही कह रहे हैं। अच्छा फहीम शेख हमारे साथ कहते हैं विसरे सारो लोग शाल न विसरे तू तो के केडो मुंह सांडियो आहे सा हमें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम अदा छा हाल आए खुश आयो सफा चाक सलेट कलम मस्त जी दवी असा भी रुलंदा फिरंदा नेट अची वयासी प्रोग्राम तो लाजवाब आए हमेशा जी आवाम आगे बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपको भी खुशामदीद। अच्छा फरवा कहती है आप ही अर्ज किया है मैं चाहूं भी तो वो अल्फाज ना लिख पाऊं जिसमें बयां हो जाए कि मैं कितनी आपकी इज्जत करती हूं दिल से। ओके जी थैंक यू बहुत शुक्रिया। अच्छा साजिद खान अच्छा साजिद अली कहती है अस्सलाम वालेकुम कैफा हाल प्रोग्राम माशाल्लाह माशाल्लाह सदरा मुस्कान थैंक यू जी थैंक यू आपको भी वेलकम हो गया। मुजाहिद मलिक लिखते हैं कि फाइनली आ गई सिडो बड़ा वेट

0: कहते हैं लाडली पहचाना या भूल गई? जी जी, आपको पहचान गई, आप बहुत अच्छी और पुराने लिसनर हमारे अब्दुल रजा को भी सुन रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा बहन, कैसी हैं आप? आपका प्रोग्राम नाई से, आपकी आवाज की क्या ही कहने, माशाल्लाह। 20 दिन जरूर इस्तेमाल करेंगे और सॉन्ग सुनना चाहते हैं, डेडिकेट अब्दुल रजाक मुश्ताक अहद। ओके ओके भाई, सबकी फरमाइशें लगाएंगे जी। जाहिद अली बुर्दी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? दर्दी दिल आ चुकी हैं, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून। कहती माय फेवरेट मोस्ट फेवरेट आरजे चंदा जानी, कैसी हो? वेलकम टू शो यू एंड मी। अच्छा, समझ गई, बहुत शुक्रिया स्वीटी, आपको भी वेलकम हो गया, थैंक यू के साथ। और जिब्रान कहते हैं कि वैसे यहां से गुजर रहा था तो लाडली का शो नजर आ गया, सोचा एक फीडबैक कर दूं। अच्छा सोचा आपने, अच्छी सोची माशाल्लाह आपकी। चलिए, अब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का भी परचेज कीजिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती में लाए इजाफा और आपको बनाए इतना खूबसूरत कि आप बन जाएं खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश आपके लिए अवेलेबल है। अच्छा, समझ गई, बहुत शुक्रिया स्वीटी, आपको भी वेलकम हो गया, थैंक यू के साथ। और जिब्रान कहते हैं कि वैसे यहाँ से गुजर रहा था तो लाडली का शो नजर आ गया, सोचा एक फीडबैक कर दूं। अच्छा सोचा आपने, अच्छी सोची माशाल्लाह आपकी। चलिए, अब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का भी परचेज कीजिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती में लाए इजाफा और आपको बनाए इतना खूबसूरत कि आप बन जाएं खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश आपके लिए अवेलेबल है। और यहाँ पर महर इरफान सियाल साहब भी हमारा शो सुन रहे हैं, कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम, ग्रेट होस्टिंग में मार्जे, थैंक यू वेरी मच सर, आपकी ये मोहब्बतें हैं, आप प्रोग्राम सुनते हैं, फीडबैक करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर टाइम हुआ चाहता है जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएं, जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, प्रोग्राम सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक। टाइम हुआ है जी कमर्शियल का और उसके बाद आप जरा टॉपिक को फॉलो कीजिए, मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरत होते रहिए।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो, आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें, शराय तो जवाबित लागू है।
2: नूरे जा पीओ रेडी ते चारे मसाले जो बुधाइन पया, भला इहो त बुध आई वठी अच।
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
4: हा भाग भरी चंगो थो लगे मा हाणे ही थो वठी अचा।
5: जीजा चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ए जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करियो।
6: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना देयो नवी दुनिया पलोर रवानवी, خود پولیو رنز دا قدمونو درولی همشی نو پدی وجا دا پولیو دا هر مهم پا محال دا پولیو تیم دا دروازی تکولو جواب ورکوی او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی 2 ساسکی ورکول ماهی روی زکا چه هم دا غساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی تا کز زیادوی او دا حقی دا خوبون و الوت وزری مومی پولیو یعنی مستقل مازوری।
7: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ गिलो, पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट, हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी, बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
8: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल मजूरी।
9: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
10: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरण, मेहरापुर, मादली, मटियारी, नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश मौजूद है। बिल्कुल जी जनाब, खूबसूरतियाँ हासिल करना चाहते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ये तो जरा बात ही नहीं बनती ना। तो अगर आप खूबसूरत बनना चाहते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हाँ ये बात बन रही है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर यहाँ पर बात की जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती में इजाफा इसलिए लाने वाला प्रोडक्ट है क्योंकि ये जनाब 2-in-1 फार्मूला है। क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल के फौरन बाद ही आप लोगों को ऐसे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं जो कि आप लोगों को किसी महंगे से फेशियल से भी शायद मिल पाते हो। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स हैं, अल्फा आर्बुटिन है, कोचिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है। बिल्कुल, ये सब चीजें सुनने में ऐसा महसूस होता है वाइब ऐसी आ रही है कि भाई ही तो डाढ़ो मतलब महंगो प्रोडक्ट हूँ अहिड़ी का भी गाल कोने का महंगो प्रोडक्ट ना ही बाबा, मुनासिब कीमत में तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही है। एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल का फौरन बाद ही तव्हांखे अहिड़ो जबरदस्त निखार मिलंदो, अहिड़ी जबरदस्त ब्यूटी मिलंदी जो तव्हां पाण ई चवंदा आए हाय मज़ा ही अची विया। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेको मेडिकेटेड फार्मूले सां तयार थियल आहे और डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी हर स्किन जे हिसाब सां तयार थियल आहे, चाहे तव्हांजी स्किन सेंसिटिव आहे, कॉम्बिनेशन टाइप आहे, नॉर्मल आहे, ऑयली आहे या जंहिं भी टाइप जी तव्हांजी स्किन आहे, हर स्किन जे मथां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघिजे थो। और चाहे आप लड़कियां हैं, लड़के हैं, मर्द हज़रात हैं, ख़वातीन हैं, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकता है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम से फायदा उठाइए। और जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ 2 दिनों में वाज़े नताइज दे रही है आपकी स्किन के ऊपर, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करें तो ये चीज भी आपके जहन में होनी चाहिए कि सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी परफेक्ट खूबसूरती के लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित होने वाला है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेशक लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन जो आपको नंबर बता रही हूँ ना प्रोग्राम के अंदर उसके ऊपर जरा रब्ता कीजिएगा और नंबर डायल करने के फौरन बाद ही आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल करा दी जाएगी। क्योंकि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलनी चाहिए प्रोडक्ट ताकि आप बस जाएं और परचेज करके आ जाएं। क्योंकि ये चीज भी बड़ी आसान सी हो जाती है कि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर तमाम प्रोडक्ट्स वो मिल रहे हो जो कि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो चाहे आप किसी भी एरिया से हैं, किसी भी सिटी से आपका ताल्लुक है, किसी भी गांव से आप हमारा शो सुन रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारी आवाज आप तक आ रही है, तो मतलब आप हमारे इस प्यारे प्रोग्राम का हिस्सा है। तो आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश का अवेलेबल कराइए, उसके बाद परचेज करते जाइए। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आप जानते हैं जनाब कि आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। तो डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये भाई इतना जबरदस्त, इतना कमाल का प्रोडक्ट है कि जब आप ये दोनों प्रोडक्ट परचेज करेंगे, चाहे वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो, लगाने के बाद और परचेज करने के फौरन बाद ही आपको एहसास होगा कि वाकई आप कितना अच्छा, कितना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार की गई है, आपकी खूबसूरती में निखार लाने के लिए परफेक्ट फेस वॉश साबित होने वाला है। जो लोग कहते हैं कि भाई हम साबुन नहीं लगाते हैं, साबुन से थोड़ा सा मतलब आपको मसला होता है, आप चाहते हैं कि भाई कोई हमारे पास अच्छा सा फेस वॉश होना चाहिए, तो फेस वॉश में अच्छा सा फेस वॉश अगर आप तलाश कर रहे हैं तो डी स्किन फेस वॉश आपके लिए बेस्ट साबित होने वाला है और वो भी फॉर एवर के लिए। तो डी स्किन का फेस वॉश यूज कीजिए, आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी और क्लीन भी रहेगी। तो डीपली क्लीन अगर आप अपनी स्किन को करना चाहते हैं तो डी स्किन का फेस वॉश आप ही के लिए है। डी स्किन का फेस वॉश यूज करते रहिए, खूबसूरतियां हासिल करते रहिए और जरा खूबसूरती की दुनिया में कदम रखते जाइए क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं। जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बनते जाइए, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर किया करें। लाइक नहीं करते हैं आप, इतनी कंजूसियां, हाय अल्लाह यो सही कोन अथव। अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जनाब डायल कीजिए 0332738 4309 बुरी 332 है 73 84 309 और नंबर आ है 03
1250259 07 ॿुड़ी 312 पंजवीह 970 ही ॿई नंबर आहिनि जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते चाहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या वरी डी स्किन फेस वॉश हुजे तव्हां इज़ीली अवेलेबल कराए सघो था. अवेलेबल करायो तव्हांजे लाइ आसानी थी वेंदी, तव्हांखे काॾे ॿाहिरि वञण जी ज़रूरत न पवंदी. बसि तव्हां वञो पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते ऐं तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिलंदी हुजे. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जा कमाल ई कमाल आहिनि बाबा. इस्तेमाल कयो जी तव्हांखे ख़बर पए त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी स्किन जे लाइ छो ज़रूरी आहे. अच्छा, मां तव्हां खां सवाल पुछो आहे. सवाल इहो पुछो आहे त तव्हां मूंखे ॿुधायो वो क्या चीज है जिसके दांत तो बहुत हैं लेकिन वो खाती कुछ नहीं है. हाँ जी, और इसी के साथ साथ आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जा रहे हैं. आपके लिए अच्छे अच्छे गाने मैंने जरा लिस्ट में लगाए हैं, तो आइए जरा हम गाने भी सुनते हैं. आप क्या कह रहे हैं, आपके मैसेजेस और फीडबैक्स की जाने भी आ जाते हैं. आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए. और जो कंजूस लोग पोस्ट को लाइक नहीं करते हैं ना, अरे भाई कर दिया करें, कोई पैसे नहीं लगते, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें. बहुत सारे लोगों को बताना है कि मार्केट में डी स्किन ब्यूटी क्रीम आ चुकी है. सो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रिक एंड हैव अ गो.

भैया की नजरें कितनी तेज है ना, कसम है मैं कभी कभी थोड़ा सा हैरान हो जाती हूँ, मेरी लिसनर्स इतनी तेज है। अच्छी बात है, साबित कर दिया मेरी लिसनर्स हैं।

बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जा रहे हैं। दर्दे दिल कहती हैं कि अल्लाह रबे करीम से दुआ है कि वो पाक जात आपकी जिंदगी में इत्मीनान कल्ब की ऐसे दिए रोशन करे जिनकी रोशनी कभी मध्यम ना हो, खुशी के ऐसे फूल खिले जिनकी खुशबू और ताजगी कभी मानिद ना पड़े, चेहरे पर खुशियों से भरपूर मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रहे, खुश रहें, शाद रहें, मुस्कुराती रहें और खुशियां बांटें, हमेशा मुस्कुराहट लबों पर सजाए रखें। बहुत शुक्रिया जी, आमीन, थैंक यू, आप हमारे साथ हैं। दर्दे दिल ऐसे नारबानी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, उलैले सलाम अदर। ओ माय फेवरेट आरजे मैडम मुस्कान, कैसी हैं आप? वेलकम, आपको भी वेलकम हो गया जी। और ये हमारे साथ ही हमारी निदरी कहती है अस्सलाम वालेकुम स्वीटी आरजे, वेलकम टू शो, कैसी हो शोना, टॉपिक ओके ओके। दर्द दिल कहती है ये क्या है, यानी कि सवाल के ऊपर बोल रही है। अच्छा, उन्हें कहा अलावा फहीम तमाम भी टॉपिक जो जवाब देने हुआ है, और निदरी आपने क्या ही टॉपिक का जवाब दे दिया है।

बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए और मुझे बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया या फिर अभी तक कर रहे थे हैं आप। लिस्ट में आइए जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वालों की लिस्ट में आइए। और जी साथ साथ निदड़ी की आवाज से लग रहा है तबीयत कुछ ठीक नहीं है यू की? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल फिलफाट अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत दिनों के बाद शायद सुन रही होंगी इसीलिए आपको ऐसा लगा होगा। और चाचा खालिद कहते हैं हाय सिद्रा कैसी हो? मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं चाचा कैसे हैं? अच्छा ये हिदायतुल्ला कहते हैं सलाम कैसी हो, ये सॉन्ग चलाना दिलबर का। वैसे ये कॉपी सॉन्ग है तो आपके प्रोग्राम का वो क्या बोलती हो ना टेम्पो भी खराब नहीं करेगा। चलें ठीक हो गया, मैं देखती हूँ मुझे मिल गया तो लगा लेते, नहीं तो आप ऐसा कीजिएगा जरा मुझे लिंक शेयर कीजिएगा।

वाइजेशन डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आप लोगों तक नशर किया जा रहा है। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया जी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको बना देगी ऐसा खूबसूरत जैसी खूबसूरती आप हासिल करना चाहते थे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरती को पहचानिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स भी हैं, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको ऐसे रिजल्ट्स देने वाली है जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो जल्दी जाइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कीजिए और खूबसूरत होते जाइए। अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन का फेस वॉश भी इन हो चुका है मार्केट में। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें तो साथ में डी स्किन का फेस वॉश भी परचेज कीजिएगा, क्योंकि खूबसूरती चाहिए वो भी मुकम्मल वाली। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए, आपके जल्द के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस्तेमाल करते रहिए और मुझे बताते जाइए कि आपके एरिया में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और हाँ, आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं।

अच्छा साजिद अली, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी, जामिन का गाना लगाएंगे और बहुत अच्छा वाला गाना लगाएंगे, ठीक है जी। चाचा कहते हैं आपकी आवाज बहुत अच्छी है, अपनी आवाज में सॉन्ग तो सुनाएं, मैं कोशिश करूंगी आपको गाना सुनाऊं। और कहते हैं कि हवाओं में, अच्छा ये वाला सुनना चाहते हैं, ठीक है जी। कोई दूसरा ना सुना दूं? अच्छा नजर मोहम्मद भटिया में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं आज मेरी पसंद का सॉन्ग चलेगा सनम आरवी, मैं कोशिश करती हूँ जी। और फहीम भाई कहते हैं कि पानी से प्यास ना बुझी तो मैं कदे की तरफ निकला, सोचा तेरी शिकायत बस कर दे। डीस्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। और नसीम गुलाम दीन भाई, वालेकुम अस्सलाम, विलेज अली बख्श जकड़ो खां, आपका शो आपकी तरह है बहुत अच्छा और हम नूरियाबाद वाले वेट करते हैं। किस चीज का? मेरे प्रोग्राम का।

क्या बात है जी, क्या बात है। आपकी कमेंट्स ऐसे धड़ाम धड़ाम आते जा रहे हैं, ऐसी पोस्ट को भी लाइक कीजिएगा। जाहिद अली बुर्दी कहते हैं ब्यूटीफुल एंड नाइस एवन शो सिर्फ 88 पर सदरा मुस्कान गुल गुलाब जो जियो करे से अल्लाह। अच्छा मोहम्मद अली खोसू भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम अटियारी से आपने हमें ज्वाइन कर दिया, बहुत शुक्रिया। चौधरी कहाफुल्ला मेथलो हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम जी, कहते हैं कैसी आप? मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं आप कैसे हैं? फरवा आपने टॉपिक का जवाब दिया, ठीक है जी। रशीद खोसू भाई हमें सुन रहे हैं हैदराबाद से, भाई को वेलकम कहते हैं।

ओके जी, क्या बात है, बड़ा ही प्यारा गाना एंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर हमारे साथ जितने भी लोग मौजूद है वो सारे लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे जनाब, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपको वो खूबसूरती मिल रही है जो कि आप हासिल करना चाहते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश आप जरा अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए, लेने में आसानी हो जाएगी ना, ये इसलिए कहती हूँ। तो जो नंबर आपको प्रोग्राम में बताए जा रहे हैं उनके ऊपर जरा रब्ता कीजिएगा और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।

अच्छा मोहम्मद अली खोसो भाई और बाबल खोसो अयूब भट्टी कहते हैं हमारा प्रोग्राम सुन रहे, बहुत शुक्रिया जी। और साजिद भाई लिखते हैं कि कभी किसी से प्यार मत करना, अगर हो जाए तो इनकार मत करना, अगर निभा सको तो चलना उस राह पर, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने शेयर कर दी है। और नसीम भाई लिखते हैं कि जब वक्त खराब चल रहा हो तो पीछे से हंसने वाली आवाजें जानी पहचानी लगती है। क्या बात बोल दी। और कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम बेहतरीन है, हमने यूज की है। जिस बहन भाई को गिफ्ट चाहिए हमसे रابطہ करें, मैं सबको शो सुनने वालों को गिफ्ट करूंगा, जिसको गिफ्ट चाहिए मत करें भाई, सबको बोलें भाई अपनी अपनी लें। ये मानन के थोड़ो मतलब जेको आहे इंडिपेंडेंट बनायो, वो मतलब आसरे में न रहन। सो आसरा अगर तव्हां रखंदा न, ये आसरनि वारियूं चीज़ूं ॾाढियूं कमज़ोर हूंदियूं आहिनि। सो भाई पाण वेठो गिफ्ट जे आसरे न लॻो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो ऐं सुहिणा थी वञो।

हाँ जी, अगर आप भी मैजिक दिखना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपको इतना खूबसूरत सा निखार मिलेगा कि आप खुद ही कहेंगे जनाब क्या बात है, क्या बात है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला है, तो इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।

अच्छा वलीज इकबाल लाशारी हमारे साथ हैं मीरपुर खास से, आप हमारा शो सुन रहे हैं। सिद्रा सवाल का जवाब है बिल्कुल ओके। न्याज भट्टी कादरी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम वलीले सलाम अदर। अच्छा मटियारी खान तवां सा के ज्वाइन करवाए भांजू मोहब्बत वाइन ता मोहब्बत सा सने प्रोग्राम बुदन आयो, सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा चाचा कहते हैं तो के खबर आ चाचा गानन जो शौकीन आ है तो गाना प्ले कर। अच्छा ठीक आ मां डी स्किन ब्यूटी क्रीम सेल कराए डींदस डोंट वेरी। चले अच्छी बात है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप परचेज कीजिएगा। और उनका अलावा एसन कहते हैं मेरे कमेंट से हाँ हाँ अच्छी बात है अच्छी बात है। चाचा कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम ने धूम मचा दी है, हाओ को शक को नहीं नगाल में। आमिर खान महेश्वर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। सरमन सिंधी जो गानो तवां के बिल्कुल बुधराई नासी मोहब्बत हूं प्रोग्राम बुधो प्या। निजाम भट्टी कादरी भाई थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। और जी आपके साथ हैं नियाज भट्टी, निजाम भट्टी, अली शेर भट्टी, फराज भट्टी, जायद भट्टी, फरहान अली भट्टी। ओके सब भट्टी ब्रदर्स को बोलिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा फहीम भाई कहते हैं भाऊ या तारीफ आए या टोकू, तारीफ हुई बाबा तारीफ। अच्छा हिदायतुल्लाह आपने भी टॉपिक का जवाब दिया है ठीक है, नसीम भाई आपने भी टॉपिक का जवाब दिया है ठीक है। ओके तो प्रोग्राम में साथ रहिए और सुनती रहिए हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर टाइम हुआ है जनाब हम जाएंगे न्यूज ब्रेक की जाने, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास। सुनती रहिए और हमारा साथ दीजिए क्योंकि आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। यूज करते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।

0: मेल प्राइस ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मेल प्राइस एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मेल प्राइस ब्यूटी क्रीम, मेल प्राइस ब्यूटी सोप, मेल प्राइस एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 3105109, 03000 3105109।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03000338569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
5: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर। असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं, जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ 2, 4, 6, 9 ऐं 12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 03014531456 ऐं तौकीर अहमद 03601623793।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
6: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
6: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
7: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर, मुख्य मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
7: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
8: 03013992836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचा जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें हो रही हो, क्यों ना हो जनाब, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है आपको इतने खूबसूरत, इतने हसीन और इतने जाज़बी नजर बनाने वाले हैं कि जब आपको दुनिया देखेगी तो आपसे पूछेगी कि बताएं तो जरा ये आपकी खूबसूरती का क्या राज है, और आप उन्हें बताइएगा जनाब बेफिक्र होकर कि ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो चुकी है, तो बस जाइए और परचेज कीजिए। अच्छा, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आप इस्तेमाल करें, मुझे बताया करें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर भी अवेलेबल कराना चाहते हैं तो पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को नंबर बताया जाता है जिसके ऊपर रब्ता करके आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सकते हैं। ठीक हो गया आपका? ओके जी, तो हम प्रोग्राम के दूसरे घंटे में मुखातिब हो चुके हैं जिन लोगों ने अभी अभी सुनना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम इन खुशामदी। बिल्कुल, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और आज मैंने आप लोगों से प्रोग्राम के अंदर सवाल पूछा है कि आप मुझे बता रहे हैं कि ऐसी क्या चीज है जिसके दांत बहुत है लेकिन वो कुछ खा नहीं सकती। ओके जी, सो जल्दी से आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए और मैं आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बता रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी सी बेसिक सी चीजें तो मैंने आप लोगों को बता दी कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेट फार्मूला है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो आए ही वाइटामिन बीट्स अथस माइक्रो बीट्स अथस अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है अगर निशानी के तौर से तवा वनो था तक खबर ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम की असा परचेज कर, यानी कि तवा के दुकानदार चूनो लगाएन था तो तवा उल्टो दुकानदार के चूनो लगाया बाबा तवा उनके चो तो बाबा असा के डी स्किन ब्यूटी क्रीम की खबर आए डी स्किन ब्यूटी क्रीम के मथा डॉक्टर माई जो फोटो आए। ठीक है, अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवा परचेज करण वनो था तो यह निशानी सफा इनफ आए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के मथा डॉक्टर माई जो फोटो आए सफा या निशानी तवा के अगर खबर होंगी ना तो पोई तवा वेंदा तो तवा आराम सा डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेज करेंदा। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवा के गोठ में आयो, तवा के शहर में आयो, हर जगह ते तवा वनी आराम सा जको ना परचेज करे सगो था। पर एकड़ी इहा भी गाल आहे, अगर तवा जे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल ना है तो तवा के जेके नंबर बुधाया वन था उन नंबर से राबतो करे ता पाजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल भी कराए सको था। ओके जी, तो खूबसूरती तो हम लोग सारे लोग ही चाहते कि भाई हमें खूबसूरती मिलनी चाहिए। ये जो चेहरे पे निशानात हैं, ये रिंकल्स हैं, या फिर अपनी उम्र से बहुत बड़े लगना हम स्टार्ट हो चुके हैं, ये सब इस वजह से होता है क्योंकि आप अपने चेहरे का ख्याल नहीं रखते हैं। और चेहरे का ख्याल ना रखा जाए, मुनासिब सी केयर ना की जाए तो भाई आपकी चेहरे की स्किन जाहिर सी बातें डल होने लग जाती है, आपके चेहरे की स्किन मुरझाने लग जाती है, आपके चेहरे पर जो है ना रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप भी इन तमाम चीजों से बचना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि भाई खूबसूरती हमें कैसे भी करके अब हासिल करनी है, क्योंकि टोटके लगाना और ये तरह तरह के केमिकल वाले प्रोडक्ट से आप बेजार हो चुके हैं, तो आपके लिए आसान सा प्रोडक्ट है जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। और सबसे बेहतरीन बात की ये मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि जो डॉक्टर्स होते ना स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स, उन्होंने मिलकर ये फार्मूला तैयार किया गया है। और ये इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि भाई हम वाकई कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश है, लेकिन खूबसूरत के साथ ऐसा होता है ना, खूबसूरती के साथ साथ आपकी जल्द जो होती है वो एक अच्छी सी केयर भी जा रही होती है, और जरूरी यही हो जाता है कि आप अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में एक खूबसूरत इजाफा करें और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें। So, बिल्कुल जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी रूटीन का हिस्सा जब आप बना लेंगे ना तो ये क्रीम आपकी रोजमर्रा स्किन केयर को मजीद आसान और खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है, और आपकी जल्द को नरम, मुलायम और सॉफ्ट रखेगा, और साथ ही साथ आपकी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहेगी और आपकी स्किन केयर जो है वो बहुत ज्यादा आसान भी हो जाएगी। तो अच्छी तरह अगर आप अपने चेहरे का ख्याल रखना चाहते हैं, खूबसूरती को जरा निखारना चाहते हैं, खूबसूरत खूबसूरत रहना चाहते हैं, चेहरे को ताजगी देना चाहते हैं और हमेशा ग्लो में रहना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों के लिए है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल ये बात बड़ी मजे की और कमाल की बताने लगी हूँ कि भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम को सिर्फ खवातीन इस्तेमाल करेंगी, आप मर्द हजरात भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सब लोगों की स्किन से रिलेटेड है जनाब, सारे लोग इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरती का जरा फायदा उठाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते जाइए। और साथ में आप लोगों के लिए डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल हो चुका है, और फेस वॉश अगर बात की जाए तो फेस वॉश भी कमाल का प्रोडक्ट है। और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, और ये जो सीरम होता है ना, ये इतना कमाल का होता है, आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को हमेशा के लिए क्लीन और खूबसूरत बना देता है। और दिन भर की मसरूफियात के बाद जब चेहरे पर थकन और ये तमाम गर्द गुबार आपके चेहरे पर आ जाती है या फिर एक्स्ट्रा ऑयल आपके चेहरे पर जमा हो जाता है, और ये सब चीजें जब हद से ज्यादा बढ़ने लग जाती है तो आपको चाहिए
एक ऐसा फेस वॉश जो आपके इन तमाम चीजों को क्लीन कर दे, आपके दिन भर की ये जो गंदगी है उसे साफ करके आपकी स्किन को एक अच्छा सा लुक दे दे। तो डी स्किन का फेस वॉश आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके चेहरे को साफ और फ्रेश रखने के लिए। रोजाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं और रोजाना इस्तेमाल से मुराद यही है कि आप डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये दिन में 3 से 4 मरतबा लगाइएगा, ठीक है? यानी कि सुबह को लगाया, दोपहर को लगाया, शाम को लगाया और रात को सोने से पहले तो फेस वॉश लाजमी किया कीजिए। और रात को फेस वॉश जो होता है ना, वो बहुत सारे जल्द के मसाइल से आपको दूर रखता है। तो रात का फेस वॉश मतलब अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए और डी स्किन का फेस वॉश यूज करते रहिए। सुबह के वक्त लगाएं या दिन में लगाएं या रात में लगाएं, हर वक्त जब भी आप लगाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और वाकई कितना अच्छा प्रोडक्ट आपके एरिया में अवेलेबल हो चुका है। तो जनाब डी स्किन का फेस वॉश आप यूज करते रहिए, खूबसूरती में जरा इजाफा देखिए और हमेशा खूबसूरत रहिए। उनके अलावा अगर तुम पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराइण चाहियो था, उन चला तव्हां खे नंबर ॿुधाए वेंदा आहिनि प्रोग्राम जे अंदर, जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सघो था। सो नंबर आहे जनाब 033-27-38-43-09, ॿुड़ी 332 73-84-309 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-12-50-25-907, ॿुड़ी 312-50-25-907। सो ही नंबर्स आहिनि जेके डायल करे तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश खे अवेलेबल कराए सघो था। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे ऐं डी स्किन फेस वॉश हुजे, लॻाईंदड़ उहो बाबा ख़ूबसूरती हाणे तव्हांजे पोयां पोयां ईंदी। सो ख़ूबसूरत रहणु चाहियो था ऐं ख़ूबसूरती खे वेलकम करणु चाहियो था, त डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश खां बिना त तव्हांखे ख़ूबसूरती मिलंदी कोन। सो वञो बाबा, वठी अचो ऐं ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत रहो। ख़ूबसूरती अब बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है। तो उन खां अलावा तव्हां टॉपिक ते बि ॻाल्हाईंदा वञो था, टॉपिक खे फॉलो कंदा वञो था, असांजी पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा वञो बाबा। पंहिंजे हुजनि जो सबूत ॾियो, तव्हां ज़िंदा आहियो मूंखे ख़बर हुजणु घुरिजे। ऐं पैनल ते अगरि नज़र दौड़ायां थी त पैनल ते तव्हांजा कुझु फीडबैक्स आहिनि ऐं पैनल ते ईंदासीं बाबा। पैनल ते बि इलाही सारा माण्हू असां सां गॾु वेठा आहिनि ऐं इलाही इलाही ॻाल्हियूं कनि था,

ओके जी, सो ये हमारे साथ है नेक मोहम्मद पालारी फ्रॉम नूरियाबाद, कहते हैं बाजी सिद्रा मुस्कान आपके शो की क्या ही बात है, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, आपकी मोहब्बतें होती हैं। मेरे पुकार से अब्दुल्ला महर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और चाचा खालिद भी हमारे साथ पैनल पर मौजूद है, और पैनल ते तमाम टॉपिक जो जवाब देने वाला है, ठीक है जी, ठीक है। और ये हमारे साथ मौजूद है सलाम सिडो बाजी, मुझे लगता है हकीकत में जी जी भाई आपको बिल्कुल सही लगता है और आपने आगे क्या लिखा है, चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ हैं फिरदोस मोरो से, थैंक यू वेरी मच फिरदोस भाई, आपको वेलकम कहते हैं। और हमारे साथ ही चाचा खाले तमाम गाने जी फरमाइश कई, ठीक है जी। अच्छा फिरदोस भाई सागो मैसेज तमाम दोबारा शेयर करे छो आए सोने जिला भी मोहब्बत हूँ तमाम जू लख लख थोड़ा तां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो कौन मुखे बुधाए जो। और ये हमारे साथ हैं भाई, मैं जो भी हूँ पर एक बात के हम यूजर हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के, तो हमारे लिए सॉन्ग लगा दो, मास्टर मंजूर का सॉन्ग है खीर जेड़ो अच्छो, ओके ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का, थैंक्स शो एंजॉय कर रहे हैं भाऊ, बहुत शुक्रिया प्यारे भाऊ। और कहते हैं भाऊ थोड़ी हाजिर हाजिर।

अच्छा गुलाम शबीर अबड़ो हमारे साथ कहते बाजी सिद्रा आपकी पहेली का जवाब है बिल्कुल सही जी बिल्कुल सही और कहते हैं अच्छा गुलाम हुसैन उमराणी का सॉन्ग सुनना चाहते हैं अच्छा मैं कोशिश क्या थी भाजला गानो हलाइंदा सी मीरपुर खास अब्दुल्ला महर कहती है अस्सलाम वालेकुम बाजी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है बहुत बढ़िया जी इस्तेमाल करते रहिए ऐसे ही मंजूर अली खास के लिए है झंडो मरी सी आप हमारा शो सुन रहे हैं क्या बात है मंजूर भाई आपको वेलकम हो गया ये लिखते हैं कि जिसने अदा सीख ली गम में मुस्कुराने की उसे क्या मिटाएगी गर्दिशें जमाने की ये पोएट्री आपके लिए थी भाऊ बहुत बढ़िया

0: चाल ॾिसी
1: बिल्कुल ही स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाईंदा त दीवाना थींदा की फज़ली हमारे साथ फज़ली के ॾींहुं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे शहज़ादी सिस्टर सिद्रा मुस्कान कैसी हो जानू मीठी गुन तुम बताओ कैसी हो तेरे सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम और कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को ओके जी ओके और ये भाई साहब लिखते हैं हेलो सिद्रा आपी हेलो टू यू और कामरान भाई हमारे साथ हैं कामरान भाई आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुन रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं जी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा और इन्होंने लिखा है अच्छा मुनव्वर अली मुगल भाई हमारे साथ ही मीरपुर खासे कहते हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपकी तरह ये जो आगे आपने लिखा ना ये बहुत बड़ी बात है ये बस आप भाइयों की मोहब्बतें के मुझे इस काबिल समझते हैं वरना तो असा इन काबिल का थे बाबा हेलो सिद्रा आपी में जेबुन निसा आंसर आपने दिया है बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया आपको लास्ट में बताया जाएगा कि आपका जवाब सही था या गलत था ठीक है जेबुन निसा बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इरम कहती हैं प्यारी दिलबर दोस्त नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है आपकी तबीयत मुझे लग रहा है कि अभी तक ठीक नहीं हुई है तो बहुत शुक्रिया इरम आप हमारे साथ एंजॉय करें प्रोग्राम को और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करती रहिए

हिकिड़े माण्हू खे ॻाल्हि न वणी शायदि ईअं न निदड़ी अच्छा शमन जे गाने जी जिन जिन फरमाइश कई न ही गानो उन्हनि सभिनी भाउनि खे डेडिकेट आहे निदड़ी कहती है कि उदास रह के लोग दुखी आत्मा बन जाते हैं और मैं चालाक बनती जा रही हूँ या तो भली गाला है ना।

ओके जी निजाम भट्टी भाई वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम और ऐसन कहते लिस्ट में अज थोड़ी जगह छड़ जा असा भी गानो खणी आया आयो बिल्कुल बिल्कुल तमा जो गानो हलाण जी फुल कोशिश कंदा सी अखलाक भाई में सुन रहे हैं अखलाक भाई कहते नाइस यू थैंक यू वेरी मच प्यारे अखलाक भाई जान और चाचा कहते हैं अच्छा कहते हैं आपके शो को मैंने इंडिया में भी शेयर कर दिया बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया।

अच्छा दर्द दिल आपने भी टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है स्वीटी। निदड़ी कहती है कि मैंने ख्वाब में एक दोस्त की शादी देखी थी, तो इसका मतलब बताओ क्या सच में उसकी शादी होगी या और लेट शादी होगी उसकी? होने वाली है उसकी शादी, टेंशन ना ले। हाँ जी, लहे मुल्क तांबार, ये ना भाई, कुछ ख्वाब सच्चे होते हैं, तो जो भी सच्चे हो।

सिद्धार्थ तो लगे थे तेरे प्रोग्राम में नाचेंगे, नाचो नाचो। अच्छा निदड़ी, कौन सा गाना था उस टाइम? पता नहीं कौन सा गाना चल रहा था, बताओ मुझे तो जरा, नाम बताती हूँ तुम्हें। अच्छा नसीम भाई कहते कितने प्यार से चाहा जाए तो पत्थर भी अपने हो जाते हैं, ये मिट्टी से बने लोग ना जाने इतने मगरूर क्यों हो जाते हैं। वाह वाह, बख्त अली सियाल भाई आपको भी वेलकम हो गया, थैंक यू, आप हमारे साथ हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कौन कौन कर रहा है, हाथों मत क्यों।

हाँ टाइम बुधा चूं था बस पंध में आयो ऐसा कहते हैं टाइम तुम्हें तो पता है इंतजार मौत बराबर आहा बाबा सही था चो सही था चो और कहते हैं सॉन्ग का मास्टर मंजूर जो ऐसा दियो गानो अगर इन प्रोग्राम में हली वियो तो ठीक है नता सा पंची बची वाली प्रोग्राम में सुकून सा बुधना सी सही आ मुजी दावत खाइनो मुजी दावत खाइनो अच्छा फहीम भाई कहते हैं भाओ मैडम ने डी स्किन ब्यूटी क्रीम खरीदी है रात उसने फोटो निकाल कर भेजा था वाह सही वाह डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो इस्तेमाल करो सब सोना सोना थी वेंदा।

अच्छा फरवा तव्हां खे प्रोग्राम वणे थो थैंक यू सो मच तव्हां वैसे गाने जी फरमाइश कई छा मूंखे मिलियो त कोन तव्हांजो गानो ॾिसी वठूं था तव्हांजो गानो आहे त हलाए वठूं था ऐसिन कंहिं ते असां दुकान वारे खे चूनो कीअं लॻाईंदा आहियूं ख़बर अथव चवंदा हू इहा क्रीम रख हुन दुकान ते ॾिसी ॾिसूं न मिली त इहा पोइ वठंदासीं हा हा सही था चओ सही था चओ अच्छा लाड़खाना में आज गर्मी कुछ बेहतर है हाँ कुछ बेहतरी अच्छी भैया

डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कबो कबो कबो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कबो तां भी सब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो बाबा। अच्छा फरवा की दिया भी सारे ख्वाब पूरी नहीं होते लेकिन कुछ तो होते हैं। अच्छा हथ में गुलाब वरी कीअं अॼु यादि अची वियो चैलेंज। यहाँ पर टाइम हुआ है हम जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं वरना हंसा हंसा के मेरी हालत बुरी कर देंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगी, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, यहीं पर मौजूद रहिएगा। मैं यूं जाकर यूं वापस आते हैं। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 2:30 PM.
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व जवाबित लागू हैं।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनीय जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

अरे क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। White Asian D-Skin Beauty Show स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है D-Skin Beauty Products के तावन से, और यहाँ पर D-Skin Beauty Products आपके खूबसूरती के लिए हैं जनाब। अगर आप भी D-Skin Beauty Products का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जल्दी से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए, सारे लोग खूबसूरत हो जाए, बस आप ही पीछे रह जाए। तो जल्दी जल्दी से D-Skin Beauty क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए, और D-Skin Beauty क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल करा दी गई है। लेकिन फिर भी आप फर्ज कर लीजिए, अगर आपके करीबी जनरल स्टोर पर अभी तक अवेलेबल नहीं हुई है तो आपको जो पूरे प्रोग्राम में नंबर बता दे उनके ऊपर बस राबता कर लिया गया, या तो आप कॉल करेंगे या तो फिर आप मैसेज करेंगे, उन्हें बता दीजिए कि आप भी चाहते हैं कि अवेलेबल हो जाए हमारे एरिया में D-Skin Beauty क्रीम। या फिर ऐसा वाला सीन है कि D-Skin Beauty क्रीम तो मिलती है लेकिन D-Skin फेस वॉश नहीं अभी तक अवेलेबल हुआ, तो उसके लिए भी आप नंबर के ऊपर राबता करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर D-Skin का फेस वॉश अवेलेबल कराइए, क्योंकि D-Skin ब्यूटी क्रीम तो पहले से अवेलेबल हो चुकी थी लेकिन फेस वॉश अभी अवेलेबल कराना बाकी है आप लोगों ने। तो जल्दी जल्दी से अवेलेबल कराइए, खूबसूरत होते जाइए, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखते जाइए।

आप लाजमी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके देखिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे को बिल्कुल खूबसूरत, हसीन और प्यारा प्यारा बनाने वाली है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपको बहुत ही अच्छा साबित कर देगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप मर्द हसरात हैं, खवातीन हर कोई यूज कर सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल है, तो आप दोनों चीजें साथ में परचेज कीजिएगा। यूज करते रहिए और जरा अपने चेहरे का ख्याल रखिए, और इसके साथ साथ नंबर्स के ऊपर रابطہ करते रहिए जो कि आप लोगों को पूरे प्रोग्राम में बताए जाते हैं। अच्छा, तो आप लोगों के मैसेजेस बिल्कुल रीड आउट रखे जाएंगे, आप लोगों के साथ बातें भी होती जा रही है। और अगर आप गाने भी सुनना चाहते हैं तो गानों की फरमाइशें थोड़ी वैसे कम ही रखा करें, और बाकी जिन लोगों के गाने आज के प्रोग्राम में रह जाएंगे तो हम 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुन लेंगे या फिर कल सुन लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना हमने लिस्ट में लगा लिया है, जयपाल भाई जाने फरमाइश कर दी थी, हीर जड़ो अच्छो, यही गानो उन्हें मानन की डेडिकेट है जेके डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कर पाया। सो अमा भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कर सोना सोना थो खूबसूरती हासिल कर।

ओके जी, अनवर भाई हमें सुन रहे हैं, कहते हैं उसा बुखारी तो में आहे नाज आहिन, तो में उहे नाज आहिन, तो में उहे अंदाज आहिन, जिन लाइ असां जो दिलियूं सदक ऐं नियाज आहिन, ज़ुल्फन खे न लोड इए वाव में मिठा, केतराई दिलन जा हिते राज ऐं नियाज आहिन। वाह वाह वाह वाह, शायद सही रीड कर ली मैंने। अच्छा, उनखां अलावा फहीम कहते भाऊ आपने खोला है क्या बात है जी, अच्छी बात है, चलिए अब दुकान खोल लीजिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसमें मिलती हो। अच्छा, रमजान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।

जी निजाम भट्टी भाई, आपका बहुत शुक्रिया, इतने सारे आपने कमेंट्स कर दिए, हजार भाई आ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रमजान भाई, लगते हैं कि दिल को तेरे दीदार की आस रहती है, इन नजरों को तेरी सूरत की प्यास रहती है। मेरे पास किसी चीज की कमी तो नहीं दोस्त, मगर तेरे बगैर जिंदगी उदास रहती है। क्या बात है, बढ़िया हो गया। चाचा खालिद, तव भी असा गड मौजूद आयो, ऐसा चाचा तव जो गानो हली तो हलाय तो ना पंज बजे प्रोग्राम में तो असा लाजमी बुधी वठंदा सी। ठीक है, डिफेंस कराची में डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल। क्या बात है, वाह वाह। अच्छा जिब्रान कहते हैं, वैसे देखा जाए तो मैं 2-3 साल बाद वापस आया हूँ, लेकिन यार तुम्हारी वॉइस वैसी की वैसी है, कोई चेंज ना कुछ। लोग 4-5 दिन बाद आकर कहते सदरा तांजी आवाज चेंज थी वही आई। आप कह रहे हैं वैसी की वैसी है, हाँ हूँ तो मुख्य लगन हुआ वैसी की वैसी है, मेरे मानू ही अच्छी आऊँ थोड़ी फंटागिरी कंदा है। आवाज भी भला चेंज थी सके थी चा। हाँ वो बात अलग है कि जैसे जैसे इंसान बढ़ता है, बड़ा होता है, तो चेंजेस तो जाहिर सी बात है वो आती हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन हाँ बिल्कुल चेंज हो जाए वो अलग बात है। जी जी बिल्कुल, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाईंदा त खीर जेड़ो अच्छो थी वेंदा। तमा सब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कजो। ठीक है, किशोर भाई कहते अदा अच्छा अजू भी तमा जो कमेंट ना आया है, ये न कजो बाबा।

0: हां जी बिल्कुल बिल्कुल लाड़काणी वारे माण्हुनि जी त ॻाल्हि ई अलॻि आहे. लाड़काणी में चवंदा आहिनि घणी सूं आहे, उहो इन जे करे छो त लाड़काणी वारा माण्हू डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा आहिनि. अगरि तव्हां बि सोणा थियणु चाहियो था त तव्हां बि बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ करे सघो था. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे मुनासिब क़ीमतुनि में मिली रही आहे, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम मां फ़ाइदो वठो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कयो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिली रहियो आहे. डी स्किन जो फेस वॉश अगरि तव्हां इस्तेमालु करणु चाहियो था त उहो बि तव्हां करे सघो था. पोस्ट हिन ताईं तव्हां लाइक ऐं शेयर नाहे कयो, न जल्दी करे वठो बाबा, टाइम असां वटि बचो वञी सफ़ा थोरो आहे. सो हिते ही ओएसटी लॻायो आहे मूं.
1: कसम से आँख नम है.
0: और निदली काफी दिनों के बाद हमारे प्रोग्राम में आई थी और ओएसटी की फरमाइश कर दी. हम फरमाइश पूरी ना करें तो जरा मजा नहीं आता. सो ये निदली को डेडिकेट जाता है.

बात है जी, बहुत ही खूबसूरत सा गाना। हाँ, कुछ गाने ऐसे होते हैं, चाहे आप ड्रामा देखें या ना देखें, लेकिन गाना हुआ आपको अच्छा लगता है। ये गाना भी उन गानों में से है। बहुत ही खूबसूरत सा ओएसटी भी हमने एंजॉय किया, और साथ ही साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया यूज करते रहिए, और अपने दोस्तों को जरा मशवरा दीजिए कि वो भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते रहे। जयपाल भाई कहते कि भाऊ थोड़ा सॉन्ग सुनाया, थोड़ा थैंक्स, खुश रहे। पूरा गाना सुनना चाहते हैं तो 5 बजे वाले प्रोग्राम में फरमाइश किया करें। और हिदायतुल्लाह कहते हाय ये ड्रामा इतना अच्छा है, सच्ची बताए। किशोर भाई कहते अदा मोमट कोई मसलो ना है, बाकी अगर मुखे खबर पई हिता को मसलो आ त पो सुठो न थींदो, आ रोड ते वेही रहंदस पो जेको थियो। हिता कीअं मसलो थी सघे थो, ॿियनि माण्हुनि जा कॉमेंट अचनि था तव्हां सां ई मतिलब प्रॉब्लम हूंदो त इहो कीअं थो थी सघे, न अचनि त मतिलब सफ़ा न अचनि वरी प्रोग्राम जे लास्ट में अचनि कॉमेंट स्टार्ट थियनि था, अलाए छा ॻाल्हि आहे, ॻाल्हि थोरी मतिलब सम्झ में कोन पई अचे, मां ॾिसी वेठां थी, प्रॉब्लम सम्झ में अची वियो त थोरो हल करे वठूं था, ठीकु आहे।

विजयपाल भाई, वो बस ऐसे ही हवा में तीर मारा था मैंने। अच्छा जिब्रान, वैसे 2-3 सालों के बाद आप प्रोग्राम में आए हैं, तो जाहिर सी बात है भाई इंसान थोड़ा चेंज हो जाता है ना। वैसा मेरा वाकई मूड नहीं रहा जैसा मेरा पहले हुआ करता था, तो बहुत सारी जिंदगी में तब्दीलियां आ जाती है, इंसान थोड़ा मैच्योर हो जाता है, संजीदा भी हो जाता है। मेरा वही वाला फेज चल रहा है। अब मुझे लगता है कि मैं कुछ थोड़ा सा अच्छा सोबर प्रोग्राम कर लेती हूँ, पहले पता नहीं क्या करती थी।

ओके जी, अली मोहम्मद भाई आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। किशोर भाई कहते हैं कि अदा अगर एक रूम में 100 लोग बैठे हैं, उनमें से 99 लोग हमारे खिलाफ हो और एक मेरे साथ, तो मैं उस एक पर तवज्जो देता हूँ और ये बात रूम के लिए नहीं थी। आई नो किसके लिए थी। मैं भी दरअसल ऐसी हूँ। और ये आपकी बात आपको इसलिए सबसे अलग बनाती है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी लगाएं, ठीक है, ताकि आप खूबसूरत भी हो जाए। मजीद खूबसूरत हो जाए। और कहते हैं कि आओ कमेंट कयान थो तो ऑप्शन अच्छे थो, तो फिलहाल हिते कमेंट न थो करे सकी। रियली यो मतलब लास्ट में मेरी ऑप्शन खुली बने थो, ये क्या जादू चल रहा है। अच्छा मोहम्मद अली भाई आपको भी वेलकम हो गया, आप हमारे साथ हैं। इसी के साथ आप लोगों से जी इजाजत लेते हैं क्योंकि हमारे जाने का वक्त आ चुका है। बड़ी तरह से मुलाकात पंच बजे वाले प्रोग्राम में थी। नहीं नहीं जयपाल भाई, वो बस आपके लिए तो बिल्कुल नहीं था। अब्बास मेहर बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और कहते हैं जयपाल भाई अब नहीं नहीं कर सकते, मजाक मस्तियाँ किया करें, अच्छी बात है। पांजा पान में तो आयो। चले सुवरी मिलूं था तमाम सा पांजो इलाही सरो ख्याल रखना, किथे का गलती थी, उजे त माजरत कयूं था। सुमुकलाणी नाही बाबू सिन सलामत सा सलामत पांजो ओ हिडो सरो ख्याल रख जो। इश्क तूफान सो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: मुल्क खिलाफ असांजा इरादा जहराणा न आहिनि. दिफ़ाई सलाहियतनि ते भरोसो आहे. दिफ़ा करण सां गॾु सज़ा ॾियण जी बि सघ रखूं था. अफ़गानिस्तान बाबति बि मौक़िफ़ वाज़े आहे. अफ़गानिस्तान सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमाल न थियणु घुर्जे. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां मके ते ड्रोन हमले वारी कोशिश जी मज़म्मत. ॾियारींदड़ क़दमनि ते अफ़सोस ऐं ॾुख जो इज़हार. धुरियुनि खे सबर खां कम वठण जी अपील. शहबाज़ शरीफ़ चयो त मके ते हमले वारी किरियल कोशिश माफ़ करण जोगी नाहे. हुरम जी तहफ़ुज़ लाइ पाकिस्तानी क़ौम सऊदी अरब सां कुल्हे कुल्हे में मिलाए बीठल आहे. असांजो ख़ितो तकरारनि जी घरी क़ीमत अदा करे रहियो आहे. धुरियूं सबर जो मुज़ाहिरो कनि ऐं वधीक चिकताण खां पासो कनि. हूसिन जो सऊदी अरब ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी. सऊदी अरब पारां फिज़ाई अदनि में दाख़िल थींदड़ ड्रोन तबाह करण जी दावा. सऊदी फ़ौजी इताद जो चवणु आहे त यमनी हूसिन जे ड्रोन खे मके जी फिज़ाई हदनि में तबाह कयो वियो. हूसिन पारां मके ते हमले वारे इल्ज़ाम जी तरदीद. ईरानी परदेही वज़ीर जी बेजिंग में चीनी हमनसिब सां मुलाक़ात. ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि समेत किथे जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल. चीनी परदेही वज़ीर चयो त बेजिंग किथे में वधीक चिकताण नथो चाहे. अमेरिका ईरान इस्लामाबाद मुफ़ाहिमत तहत थियल मामलनि ते अमल कंदे ॻाल्हियूं शुरू कनि. तकरार कंहिं बि धुर जे मुफ़ाद में नाहे. अमेरिकी कांग्रेस ईरान जंग जे ख़ात्मे बाबति ठहराउ टियों भेरो बि मंज़ूर करे वरितो. ठहराउ जी हिमायत में 220 वोट पिया, 204 मुखालफ़त में वोट कयो. सदर ट्रंप जे रिपब्लिक पार्टीअ जे 7 मेंबर्स बि ठहराउ जी हिमायत कई. अमेरिकी नायब जेडी विन चयो आहे त ईरान जंग जल्द नए मरहले में दाख़िल थी वेंदी. ईरान जंग जो पहिरियों मरहलो ईरानी एटमी प्रोग्राम ऐं फ़ौज जी तबाही हो, जेको मुकमिल करे छॾियो आहे. ॿिए मरहले ईरान खे बहालीअ खां रोकण वारो आहे, जंहिं ते अमल कयो वेंदो. सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई बानी जे अस्पताल मुंतकिली वारे केस जी ॿुधणी. आईनी अदालत जे हुकुम ते अटॉर्नी जनरल खां मुआविनत तलब. जस्टिस शाहिद वहीद रिमार्क्स ॾींदे चयो आहे त आईन जी तशरीह खां सवाइ समूरा मामला सुप्रीम कोर्ट वटि आहिनि. जेको आर्डर आईनी अदालत कयो आहे, छा उहो असां ते लागू थिए थो? आईनी अदालत ऐं सुप्रीम कोर्ट जा इख़्तियार आईन में वाज़े आहिनि. अडियाला जेल इंतिज़ामिया खे ज़ाती हैसियत में तलब कयो हो. आफ़िसरनि मां को बि पेश न आहे थियो. छा जेल सुप्रिटेंडेंट जा वारंट जारी कयूं? वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि पिम्स बाबति इजलास. 3 महीननि अंदरि पिम्स खे आलमी मयार जो बणाए सुधाराइण जो हुकुम. फायर सेफ्टी निज़ाम बाबति पी के एल आई खां मदद वठण जी हिदायत. शहबाज़ शरीफ़ चयो त जांच कमेटी जी सिफ़ारिशुनि ते 3 महीननि अंदरि अमल करे इस्पताल खे आलमी मयार मूजिबि बहितर बणायो वञे. मुराद अली शाह चयो आहे त हर ॿार खे पोलियो खां बचाइण असांजी ज़िमेवारी आहे. पोलियो मुहिम लाइ माली मदद जारी रहंदी. कोताही कंदड़नि ख़िलाफ़ बि कार्रवाई थींदी. जमायत इस्लामी इम्कानी लॉकडाउन खे रद्द करे छॾियो. पेट्रोल तां लेवी ख़तम करण वारो मुतालबो बरक़रार. कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त जमायत इस्लामीअ जा धरणा जारी आहिनि ऐं जारी रहंदा. हिकु ई मुतालबो आहे त पेट्रोल ते लॻायल लेवी ख़तम कई वञे. खान इताद ऐं सिंध आवाज़गार इताद जो मुतालबनि जी मंटा लाइ 25 सेप्टेम्बर ते इस्लामाबाद में हारी मार्च जो ऐलान. कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे आवाज़गार अॻवाननि चयो आहे त कम जे फी मण क़ीमत 650 रुपया मुक़ररु कई वञे. कम जी वक़्त ते कराइण खे यकीनी बणायो वञे. पटाटा बसर ऐं टमाटा पोखींदड़ आबादगार सख़्त परेशान आहिनि. अफ़गानिस्तान ऐं रूस खां गैर क़ानूनी दरामदाद रोकियो वञे. सिंध तास मुआदे ते अमल खे बि यकीनी बणायो वञे. नौशेरो फिरोज में हाज़िरी ते अदालत वेंदड़ शख़्स क़तल. रोड़ी के नाल कुल हथियारबंदनि मोहम्मद मिठल मंगसे खे गोलियूं हणी क़तल कयो. पुलिस मूजिबि मक़तूल घोट पीरवतियो जो रहवासी आहे. मामिलो पुराणे तकरार जो लॻी रहियो आहे. वाकिए जी वधीक जांच कई पई वञे. हिकिड़ो वेझो ज़रदारी फार्म वटां ताहे लाश जी सुञाणप शहज़ाद मरीज़ जे नाले सां थी वई. पुलिस मूजिबि नौजवान कुझु वक़्त अॻु पसंदि जी शादी कई हुई. वधीक जांच करे रहिया आहिनि. नगर पार्कर भरिसां नारी ऐं नौजवान जा वण में टंगियल लाश थाया आहिनि. घोट सोरा

0: जैकमाबाद में 12 वरन जी निंगरी सा मुबैना जाती गोठ अब्दुल अजीज खारानी में जवाबदार मुबैना तौर 12 वरन जी निंगरी के जिनसी जाते जो निशानो बनाया निंगरी के चाचे जो सौर के इल्जाम कार्रवाई जो मुतालबो मीरू खान वेझो निंगर सा मुबैना बथेली गोठ गुल कलोड़ो वासी 12 वरन जी निंगर सा मुबैना बथेली कई वही निंगर के वालिद जो चवण है तो जवाबदार अमानत कलोड़ो पुट के हथारन के जोर से बथेली जो निशानो बनाया पुलिस निंगर के मेडिकल लेटर डे अस्पताल मुंतकिल कर।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: असली चीजां चारों मसालों की सुनियाण पर ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डीसी करे खरीद कंदा। जी जान चारों मसालो ढोरे जो हाजमो दुरुस्त। जी जान चारों मसालो ढोरे सेहतमंद। जी जान चारों मसालो। जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवर जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
3: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
4: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109-03000-3105-109।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 03201800003।
5: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385-69।

0: अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकानु खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजी दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलबु हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी आहे।
1: अदा जल्दी कर, मूंखे बि मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
2: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
3: 03013992836।
4: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हनि कदमनि खे रोके भी सघे थो। इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माज़ूरी।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे बारन के पोलियो खां बचाव जा कतरा जरूर पियारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफ़ती ताकत के वधाइन था ऐं इन्हन जे ख्वाबन के उडाम ॾियनि था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माज़ूरी।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000310509, 03003105109।

0: हॉन्डा मोटर साइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं हॉन्डा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018000003।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836।
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: सोनी अज त ॾाढी ख़ुशि थी लॻे।
1: हा साईं, ॻाल्हि बि अहिड़ी आहे।
0: भला मूंखे बि ॿुधाए कहिड़ी ॻाल्हि आहे।
1: चाचे, जुम्मन जी खुशहाली जो राज़ उहे पंहिंजे ढोरनि खे जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइनि। हीअ चारो ढोरनि जो हाज़मो दुरुस्त करे थो, ढोर सिहतमंद थियनि था गोश्त सां गॾु।
0: वाह सोनी, हा जी ॻाल्हि किथे मिलंदो इहो जी जान सखर चारो मसालो?
1: साईं रेडीअ ते था ॿुधाइनि, ॿुध ऐं अची वठी अच।
0: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
1: हा साईं, हा।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार जानवरनि जे डॉक्टर खां न करियो।
3: धर्माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना देयो निवी दुनिया पलोर रवानवी पोलियो मुंशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल टीम द दरवाजे औखनुता द पोलियो द मखास की वरकवल माहिर हुई जक्स की द माशुमानो द बदन दिफाई हुई और द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी यानी मुस्तक।
4: खुशखबरी, बालों की फिकर छो, रोशनी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पी आर के साथ बकम करने, कमजोर जड़ों की निशो घना और खूबसूरत बाकिन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003389।
5: खूबसूरती का असल राज सिर्फ किन ब्यूटी क्रीम मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन हर दिन का शो।
6: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथामो बदल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लाम फिजिशियन सीनियर होम्योपैथिक मेडिकल का हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर सुबह

0: It's 4:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
4: हर बार जा नंदड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके तो. इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाओ जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था. पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी.
5: अपना शहर अपना घर महराबपुर, और महराबपुर की आवाज़ GAFM 94.

0: एम दिस टाइम चेक क्रीम ग्लोइंग इज आई।
1: आप सुनेंगे नेटवर्क पर
2: विजय एसपीआर सभी मुल्क के खिलाफ आहिन दिफाई सलाहियत ते भरोसो आहे जेका करण सां गॾु सज़ा ॾियण जी बि शक रखूं था। अफ़गानिस्तान बाबति बि मौक़े पासे आहे। अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ फ़ौजी ताक़त में इज़ाफ़े लाइ घणा वसीला ख़र्च करे पियो। मुल्क वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां मके ते ड्रोन हमले वारी कोशिश जी मुज़म्मत, चिड़ ॾियारींदड़ क़दमनि ते अफ़सोस ऐं धुरियल किरण जी अपील। शहबाज़ शरीफ़ ते हमले वारी न आहे, हरम जे तहफ़ुज़ लाइ मिलाए बीच क़रारनि जी घणी क़ीमत अदा करे रहियो आहे। धुरियूं सबर जो मुज़ाहिरो कनि ऐं वधीक छिकताण खां पासो कनि। हुसियन जूं सऊदी अरब ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं, हद में दाख़िल थींदड़ ड्रोन तबाह करण जी यमनी हुसियन जे ड्रोन खे मक्का विझी फज़ाई हदनि में तबाह कयो वियो। हुसियन पारां मके ते हमले वारे इल्ज़ाम जी तरदीद। पाकिस्तान में दहशतगर्दी लाइ अफ़वाह थी रही आहे। टेररिस्ट पाकिस्तान में दहशतगर्दी लाइ सहूलियतूं फराहम करे रहियो आहे। घरू मामलनि बाबति मुमलकती वज़ीर साबितियूं दुनिया खे ॾेखारे छॾियूं। तलाल चौधरी चयो आहे त गुजे ऑपरेशन दौरान आज़ाद कश्मीर वासी ज़ियार नाले शख़्स खे गिरफ़्तार कयो, जंहिं वटि दहशतगर्दनि जे गठजोड़ जूं साबितियूं मिलियूं आहिनि। दहशतगर्दनि खे परॾेही क़ुवतूं मदद ॾेई रहियूं आहिनि। एक्शन कमेटी ते साबितियुनि बाद पाबंदी लॻाई। ईरानी परॾेही वज़ीर जी बीजिंग में चीनी हमनसब सां मुलाक़ात, तरफ़नि लाॻापनि समेत ख़िते जी तब्दील थींदड़ सूरत बोल। चीनी परॾेही वज़ीर चयो त बीजिंग ख़िते में नथो चाहे। अमरीकी कांग्रेस ईरान जंग जे ख़ात्मे बाबति ठहराउ टियों भेरो बि मनसूख करे वरितो। ठहराउ जी हिमायत जी रिपब्लिकन पार्टी जे 7 मेंबर्स बि ठहराउ जी हिमायत कई। अमरीकी नायब सदर जे जेडी वेंस चयो आहे त ईरान जंग जल्द नई मरहले में दाख़िल थी वेंदी। ईरान जंग जो पहिरियों मरहलो ईरानी एटमी प्रोग्राम ऐं फ़ौज जी तबाही हो, जेको मुकमल करे छॾियो आहे। ॿियो मरहले ईरान खे बहालीअ खां रोकण वारो आहे, जंहिं ते अमल कयो वेंदो। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई बानी जे इस्पताल मुंतकली वारे केस जी ॿुधणी आईनी अदालत लाइ। वहीद रिमार्क थींदे चयो त आईन जी तशरीह खां सवाइ समूरा मामला सुप्रीम कोर्ट वटि आहिनि, जेको ऑर्डर कयो आहे। छा कोर्ट इंतज़ामी हक़ीक़त में तलब कयो हो? ऑफिसरनि मां को बि पेश न आहे थियो? छा जेल सुप्रीडेंट वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि पिम्स बाबति इजलास? 10 महीननि अंदरि पिम्स खे आलमी मयार जो बणाए सुधारा आणण जो हुकुम। फायर सेफ्टी निज़ाम बाबति पी के लाई खां मदद वठण जी हिदायत। शहबाज़ शरीफ़ चयो त जांच कमेटी जी सिफारिशुनि ते 10 महीननि अंदरि अमल करे इस्पताल खे आलमी मयार मूजिबि बहितर बणायो वञे। जमायत इस्लामी इम्कानी लॉकडाउन खे रद्द करे छॾियो। पेट्रोल तां लेवी ख़तम करण वारो मुतालबो बरक़रार। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त जमायत इस्लामी जा धरणा जारी आहिनि ऐं जारी रहंदा। हिकु ई मुतालबो आहे त पेट्रोल ते लॻल लेवी ख़तम कई वञे। गाड़कड़ में पीपल्स पार्टी जो सिंध धरती बदर निसार खोड़ो, सेनेटर ज़मीर घुमरो ऐं विया शरीफ़। एजाज़ जकरानी चयो त क़ौमी असेंबली या सेनेट में सिंध जे इम्कानी विरागे वारी रिथ कॾहिं बि पास थियण न ॾींदासीं। सिंध विराइण जी ॻाल्हि करण खां अॻु पीपी खे ख़तम करण त ॿी ॻाल्हि आहे, हुन खां अॻु सिंध जो विरागो न थींदो। एमएनए गुल मोहम्मद जकरानी चयो त सिंध पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ आहे। 1971 में शहीद भुट्टो पाकिस्तान खे संभाले ने ख़ुर्शीद जोड़े जे चयो त सिंध खे विरायो वियो त ख़राब थींदियूं, असां सिंध जी सूरत को समझौतो न कंदा।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहिन, उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे।
4: जी जा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार 50 सालन खां आज़मायल सखर वारन जो जी जा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरन जे कंदा।
5: जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 5 तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ।

0: एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार बहरापुर, 03000 31 05 109, 03000 31 05 109।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03200 1800003।
0: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 0300-33-85-69।
2: अस्सलाम वालेकुम। अदा
3: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा
4: यार, आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुंबई।

0: मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
0: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 03013992836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन।

0: चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8051
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Har bar ja nandra kadam, ek nayi duniya da vadhan ta. Par polio inan kadman ke roke bhi sage tho. Inhiya kare jadhe bhi polio muhim dauran polio workeran ji dastak the ta dar kholyo. ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाओ जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
1: सोना सिर्फ ज़ेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कम्प्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752644 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: ज़मीन पाकिस्तान खिलाफ इस्तेमाल न थियण घुर्जे भारत पंहिंजे फ़ौजी ताक़त में इज़ाफ़े लाइ घणा वसीला ख़र्च करे पियो पाकिस्तान जी दिफ़ाई सलाहियतुनि जो मक़सदु सिर्फ़ मुल्की दिफ़ा आहे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां मके ते ड्रोन हमले वारी कोशिश जी मज़म्मत चिड़ ॾियारींदड़ क़दमनि ते अफ़सोस ऐं डुख जो इज़हार धुरियुनि खे सब्र खां कम वठण जी अपील शहबाज़ शरीफ़ चयो त मके ते हमले वारी किरियल कोशिश माफ़ करण जोगी नाहे हरम जी तहफ़ुज़ लाइ पाकिस्तानी क़ौम सऊदी अरब सां कुल्हो कुल्हे में मिलाए बीठल आहे असांजो खितो तकरारनि जी ॻरी क़ीमत अदा करे रहियो आहे धुरियूं सब्र जो मुज़ाहिरो कनि ऐं वधीक छिकताण खां पासो कनि

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372-02424601000।
4: मालवन भारन लाए खुश खबरी, 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जी जान ढोर चारो मसालो, जानवरन में खीर आई गोश्त बधाए, अम्हा के खुशहाल बनाए, हर पंसार आई जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाबा है।
5: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
6: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।

ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306

0: वायरलेस डिग्री कॉलेज हालानी रोड में रापुर
1: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
2: 03013992836।
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: सघंदो आहे, जेको ॾिसण सां सम्झी वेंदो आहे त हुनखे कहिड़ी तकलीफ़ आहे, मादे जो छा मसइलो आहे, पोइ त ठीकु आहे। वरना जेकॾहिं माण्हू अहिड़े हंधि पहुचे थो ऐं पोइ जेको आहे सो हुनखे फ़िलहाल ॿ टे साल हुन ईअं भई दवाऊं करायूं या छो जो असां वटि अहिड़ा पेशंट्स ईंदा आहिनि ऐं ईअं ॿुधाईंदा आहिनि ईअं थियो आहे। ऐं अॼुकल्ह मिसाल को कैप्सूल आहे मादे जो, मिसाल को पियो थो खाए माण्हू, ॾह ॾह साल गुज़री वञनि था, लेकिन पोइ उन्हनि जा साइड इफ़ेक्ट्स बि एॾा सारा आहिनि जो पेशंट पोइ पछाड़ी में जेको आहे सो बर्दाश्त बि कोन करे सघंदो आहे उहा बीमारी। हेलिको बैक्टेरिया हिकिड़ो वायरस आहे जेके एच पैलोरी असां चवंदा आहियूं, ऐं मुख़्तलिफ़ काफ़ी दफ़ा असां हिन ते प्रोग्राम बि करे चुका आहियूं, ॻाल्हाए चुका आहियूं, ऐं ॻाल्हाइण जी ज़रूरत हूंदी आहे ॻाल्हाइण इन जे करे जो इहा बीमारी हींअर घणी वधी वई आहे ऐं बार बार थियण जे करे जेको असां इहा हिकिड़ी अवेयरनेस ॾींदा आहियूं त अहिड़े क़िस्म जी जेकॾहिं तव्हांखे तकलीफ़ थिए थी त तव्हां उन में ग़लती न कयो, शुरू में तकलीफ़ जीअं थिए त जल्दी कंहिं मुस्तंद डॉक्टर वटि पहुचायो, उन में ई एहतियात ई परहेज़ ज़रूरु कयो त जीअं तव्हांजी इहा तकलीफ़ अॻिते वधण खां बची वञे ऐं उन में तव्हां कहिड़ो इलाजु कराए सघो था। अहिड़े तरीक़े सां हेलिको बैक्टेरिया जंहिंखे घणा ई मज़ाकनि हेलीकॉप्टर वारी बीमारी बि चवंदा आहिनि, इहा बिल्कुलु ईअं ई थींदो आहे जो मां ॿुधायमि त शुरू शुरू में पहिरां माण्हू खे जलन थींदी आहे, वरी इन जी ख़ासि निशानी इहा हूंदी आहे जीअं माण्हू मानी खाईंदो आहे त पेट में सूरु जेको आहे सो वधी वेंदो आहे, ऐं सूरु जॾहिं वधी वेंदो आहे पेट ते भर्ती बि रहंदी आहे ऐं गैस भरिजी वेंदी आहे, लेकिन ईंदो ईअं आहे उहो उन अनंढी जेकी पंहिंजो आंडरो हूंदो आहे उन ते सोज़िश थी वेंदी आहे, उन ते ज़ख़्म थी वेंदो आहे, पोइ जॾहिं अॻिते हली इहे तकलीफ़ूं वधी वेंदियूं आहिनि पोइ त पोइ उहो सूरु वधी वेंदो आहे, ऐं त हर मानी खाइण खां पोइ मिसाल ॿिनि टिनि कलाकनि खां पोइ सूरु थी वेंदो आहे, ऐं त उल्टी बि अची वेंदी आहे घणनि खे दिलकची उल्टी, ऐं सूरु अॻिते हली इहा इते इन खे असां हल्को न वठंदासीं छो जो इहो मर्ज़ु अॻिते हली कैंसर में बि जेको जेको आहे सो मुफ़्त यानी हिकिड़ो मुंतक़िल थी सघे थो, बल्कि मुंतक़िल थी वेंदो आहे। इन जे करे इहा जॾहिं बि अहिड़े क़िस्म जूं इहे तकलीफ़ूं थियनि त ज़रूरु कंहिं डॉक्टर पंहिंजे पंहिंजो मुरादो दवा हरगिज़ न खाइजे। इन जे लाइ एच पैलोरी हिकिड़ी स्टूल डी आर टेस्ट थींदी आहे या जेको आहे सो स्टूल जे हवाले सां यानी पाखाने जी हिकिड़ी टेस्ट थींदी आहे उहा बि माण्हू कराए सघे थो, त उन सां जेको आहे सो उन में एंटीजीन स्टूल डी आर जी मां ॻाल्हि कई त उन में यानी हिकिड़ी ख़बर पइजी वेंदी आहे त कहिड़ी तकलीफ़ आहे ऐं पोइ उहो वायरस आहे या न आहे। घणियूं ई आम टेस्टूं हिकिड़ियूं उन जूं निकिरी पियूं आहिनि अॼुकल्ह जेको आहे सो यानी के विया हुआ स्टिक ते चेक कराई ॿ यानी पॉज़िटिव आई त सम्झो त, लेकिन उन खां बहितर इहो हूंदो आहे त माण्हू सुठी जेको आहे सो जेके थोरी टेस्ट हूंदी आहे उहो माण्हू कराईंदो त उन में माण्हूअ जो डिफेंस थी सघे थो, ख़र्च बि हुनजो सजायो थी सघे थो। उन खां पोइ उन में परहेज़ तमामु ज़रूरी हूंदी आहे ऐं ॻाढ़ो मिर्च बिल्कुलु जेको आहे सो मना हूंदी आहे, तरियल शयूं, खटियूं शयूं, वॾो गोश्त वग़ैरह इहे बिल्कुलु हरगिज़ न खाए। दलियो वग़ैरह माण्हू इस्तेमालु करे सघे थो, चांहि जो इस्तेमालु बिल्कुलु घटि करे सघे थो, थधियूं शयूं इस्तेमालु करे, ऐं बिल्कुलु प्रोग्राम असांजो जारी रहंदो। जी साईं, ऐसा सभु
1: तमामु वॾी महिरबानी सर, तव्हां हिकु बहितरीन मालूमात ॾिनी। डॉक्टर साहब, हर बार खमीस जुमे छंछर या आचर ते सुबुह 10 वगे खां शाम 5 वगे ताईं जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक साम्हूं वधन पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मैरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा आहिनि। ऐं नोट, अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे ऐं इन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे, बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तां वठणी हूंदी आहे। असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था, जिन नंबर आहे 0301-2196-8051। डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में गुर्दे, पिते, मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। संदनि जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुन रॻ जो सूरु, नक, कन, गलो, पुराणलो, नज़लो, निछूं, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज, खंघु, टीबी, मैदे जो सूरु, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपाटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9896-51। हिन नंबर ते तव्हां कॉल करे कंहिं बि बीमारी बाबति ॼाण हासिलु करे सघो था। हिकु दफ़ो ॿीहर डॉक्टर साहिब जो एड्रेस ऐं टाइम अव्हां खे ॿुधाईंदा हलंदासीं, लेकिन हिन खां पहिरियां डॉक्टर साहिब कॉल आहे उनजी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
2: साईं वारेकुम सलाम। साईं मां मुंहिंजा सठ गुट साले सर्दे खां मां ॻाल्हायां। मूंखे कन में थी आराई वॾी थी वई, हाणे सूरु आहे कन में ॾाढो।
1: अच्छा, ठीकु आहे डॉक्टर साहिब, तव्हांखे ॿुधाए थो, रेडियो ॿुधो।
0: जी साईं, बिल्कुलु गर्मी दाणा निकिरंदा रहंदा आहिनि, लेकिन इहो आहे त रहकनि जी टाइप सां अलॻि हूंदी आहे। हिकु त जेको आहे सो तरियल शइ, खटी शइ या जेको सो अंब वग़ैरह खां खाइण खां परहेज़ कयो, ऐं मेट जो इस्तेमालु ज़रूरु कयो। मेट जेके आराई आरायूं जंहिंखे चऊं या गर्मी दाणा बहुबदा कन जे ॿाहिरां जेको आहे सो आहे त उनखे अन इहो जेको मेट आहे, मेट जो इस्तेमालु करण सां मेट थधो हूंदो आहे, इन सां आराई या अहिड़े क़िस्म जा दाणा जेके आहिनि से ख़तमु थी वेंदा आहिनि, वरना बसूरत दीगर पोइ रूबरू बि ॾेखारे सघे थो वॾी महिरबानी।
1: डॉक्टर साहब, हर बार खमीस जुमे छंछरु आचर ते सुबुह 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पटरा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मैरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9196-51। डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में गुर्दे, पित्ते, मसाने जी पथरी जो कामयाब इलाज कंदा आहिनि। कॉल जी तरफ़ हलंदासीं, ॾिसूं था कहिड़ा लाइन ते मौजूदु। अस्सलाम वालेकुम। जी दादा, छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहब खां?
3: सर, चमड़ी ते पुरड़ियूं वग़ैरह छॾनि न थियूं।
1: अच्छा, उमिरि घणी आहे?
3: उमिरि आहे 15 साल।
1: ठीकु आहे, रेडियो ॿुधो, डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो। जी सर।
0: जी साईं, हीअ मौसमु आहे चमड़ी ते जॾहिं जेके आरायूं या वरी क़िस्म जूं पुरड़ियूं या फुंसियूं थी वेंदियूं आहिनि त इहो सम्झो रत जो बिगाड़ थी वेंदो आहे, रत में अंदरि गरमाइश थी वेंदी आहे, ऐं मैदे जे करे बि जेको आहे सो मैदे में गरमाइश हूंदी आहे, जंहिंजे करे बि थी वेंदो आहे। बहरहाल हिन जे लाइ हिन मौसम में जेकॾहिं कंहिं बि दोस्त खे अहिड़े क़िस्म जूं फुरड़ियूं वग़ैरह निकिरनि थियूं त पनीर जो इस्तेमालु तमामु बहितरु आहे। रोज़ाना राति जो 7-8 दाणा पनीर जा, 2 कारा मिर्च, 1 नंढड़ो फोटो ऐं 1 नंढड़ो टुकड़ो मिस्री जो पाणी में पिसाए रखो, सुबुह जो नेराणे उहो जेको आहे सो पाणी छाणे ऐं उहो पीअनि इनशाला ताला। अच्छा, इन खां इहो आहे त सुबुह जो पहिरां वेझी छॾनि ऐं पोइ उहो पाणी पीअनि, छो जो इहो पीउ ऐं पोइ वेझणो न हूंदो आहे, ऐं घटि में घटि पीअण उन पाणी जे पीअण खां कलाक बाद में ई कुझु न कुझु वरी ॿियो खाइणो हूंदो आहे, छो जो हीउ कुझु अहिड़े क़िस्म जूं तिब जूं दवाऊं हूंदियूं आहिनि जंहिंसां ही अहिड़े क़िस्म जा एहतियात तमामु ज़रूरी हूंदा आहिनि, ऐं इन सां गॾोगॾु अंब, चांवर, खटियूं शयूं इहे इस्तेमालु हरगिज़ न आहिनि करणियूं। थधियूं शयूं इस्तेमालु करणियूं, खीर जो इस्तेमालु कनि, इनशाला ताला काफ़ी सारो फ़ाइदो जेको आहे सो पइजी ईंदो, वरना फ़र्क़ु न पए त बरूबरु ॾेखारे छॾियो।
1: महिरबानी सर। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, ऐं GFM 94 जे लाइव स्टूडियो में अव्हांखे प्रोग्राम नशर कयो पियो वञे। डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में संदनि, जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुन रग जो सूरु, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछूं, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज, खंघि, टीबी, मैदे जो सूरु, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश फट फुरणियूं ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारी जो इलाज कंदा आहिनि। असांजे लाइव कॉल ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था। लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301 91 8051।

0: कि ॿिए हंधि न वञनि जिते इहे हर्बा इस्तेमालु थियनि था, जिते टुका लॻनि था, जिते ॾंभ अचनि था, जिते रत निकिरनि था, त माण्हू जी जंहिंजी जान ख़तरे में पइजी सघे थी। सो असां वटि त इन शइ जो कामयाबु इलाजु आहे। अलाह ताला जी महिरबानी सां उन जा व्यूज़ बि मौजूदु हूंदा आहिनि, उहे पेशंट्स बि ईंदा आहिनि, ऐं इन जो ट्रीटमेंट जेको आहे सो होम्योपैथिक दवा जे रस्ते मुमकिन आहे, बहितरु आहे। सो अधो परे कोन वेठो आहे असां वटि त माण्हू जेको आहे सो लाड़काणे खां बि इन मर्ज़ में आयल आहिनि, माशाला घुटकी खां बि ईंदा आहिनि, बलोचिस्तान खां बि ईंदा आहिनि, ऐं उन्हनि खे फ़र्क़ु पवंदो आहे। सो अधे खे चवंदुसि त बहितर इहो ई आहे त सुबुह जे पहिरें पहर में बरूबरू ॾेखारे वञे त वधीक बहितरु रहंदो। छा तव्हांजो ख़्यालु आहे भाई?
1: जी सर, बिल्कुलु सही पिया चओ तव्हां, वधीक बिल्कुलु क़रीब आहे कोटड़ी कबे सर, अचे रूबरू ॾेखारे वञे त वधीक बहितरु थींदो।
0: जी साईं।
1: जी सर, प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मोहम्मद साहबु। हाणे वक़्तु थियो आहे शॉर्ट कमर्शल ब्रेक जो, त हाणे हलूं था शॉर्ट ब्रेक कमर्शल जी तरफ़। गॾु गॾु रहिजो ऐं ॿुधंदा रहो ZFM 94 मेहरापुर।
2: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
3: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर पियारियो, छो त ये कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतिलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
5: अई अदी, अॼु त ॾाढी ख़ुशि पई नज़र अची।
6: छो न ख़ुशि थियां अदी, जॾहिं खां मुंहिंजे मुड़ुस ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो खारायो आहे त खीर जी पैदावार ॿीणी थी वई आहे ऐं हाणे पैसा बि ॿीणा था अचनि। ही ॾिस सोनियूं चूड़ियूं।
5: त मां बि वञी चवां हुन खे त ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो ई खाराए।
7: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
8: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी। खुद पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हुमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई। اخبل ما شمانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول ماهی روی زکا چه هم دا ساسکی دا ما شمانو دا بدن دفاعی تا کزیاتوی او دا حقی دا خوبون والوت وزاری مومی پولیو یعنی مستقل مازوری।
9: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर। आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बहितर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस
10: इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
11: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
12: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन दिहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
13: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-3385-69।

वज़ीर-ए-आज़म फ्यूल सब्सिडी ते अमल लाइ इंतज़ामिया ऐं पेट्रोल पंप जे अमले ते वधल सहूलत डेस्क क़ाइमु करण जी हिदायत करे छॾी। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त सहूलत डेस्क ते मौजूदु माण्हू फ्यूल स्कीम जे मुस्तहिक शहरियुनि जी रहनुमाई कनि। अवाम खे रजिस्ट्रेशन ऐं ॿियनि ज़रूरी मरहलनि में हर मुमकिन रहनुमाई फराहम कई वञे। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म खे आगाही ॾिनी वई त आज़ाद कश्मीर ऐं गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे मुल्क में स्कीम शुरू थी चुकी आहे। मोटरसाइकिल, रिक्शा ऐं 800 CC ताईं गाॾियुनि जे मालिकनि खे सब्सिडी ॾिनी पई वञे। स्कीम मुल्क गीर सतह ते लागू करण लाइ सूबाई हुकूमतूं सहकार करे रहियूं आहिनि। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां दिफ़ाई ऐं अहम इंफ्रास्ट्रक्चर जे शोबनि में ख़िदमतूं फराहम कंदड़ अमरीकी कंपनी जे वफ़द जी मुलाक़ात। गॾियल दिलचस्पी जे मामलनि ऐं दिफ़ाई टेक्नोलॉजी जे तब्दील थींदड़ रुझाननि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। दिफ़ाई सामान जी ख़रीदारी ऐं पैदावार वधाइण जे शोबनि में सहकार जे इम्काननि ते बि ॻाल्हियूं। गॾियल दिलचस्पी जे शोबनि में सहकार ऐं राब्तनि खे वधीक हथी ॾियण में दिलचस्पी जो इज़हार। फील्ड मार्शल जो क़ौमी सलामती ऐं मुल्की इस्तेहकाम खे मज़बूत बणाइण में तकनीकी जिदत जी अहमियत ते ज़ोर भरींदे चयो त जदीद टेक्नोलॉजी ऐं जिदत क़ौमी सलामती तोड़ी इस्तेहकाम लाइ अहम आहे। मक्का मुआदे में शामिल कंहिं बि मुल्क ते हमिलो थियो त टई मुल्क गॾियल फ़ैसिलो कंदा। मक्का दिफ़ाई मुआदो जारियाणो न पर दिफ़ाई नोयत जो आहे। दिफ़ाई वाइदनि जा ऑपरेशनल तफ़सील अवामी सतह ते नाइन ॿुधाया वेंदा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ़ चौधरी जो अरब TV खे इंटरव्यू। DGISPR चयो आहे त कंहिं बि मुल्क ख़िलाफ़ असांजा इरादा जारियाणा न आहिनि। दिफ़ाई सलाहियतनि ते भरोसो आहे। दिफ़ा करण सां गॾु सज़ा ॾियण जी बि सघ रखूं था। अफ़गानिस्तान बाबति बि मौक़िफ़ वाज़े आहे। अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमालु न थियणु घुरिजे। भारत पंहिंजी फ़ौजी ताक़त में इज़ाफ़े लाइ घणा वसीला ख़र्च करे पियो। पाकिस्तान जी दिफ़ाई सलाहियतनि जो मक़सदु सिर्फ़ु मुल्की दिफ़ा आहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां मके ते ड्रोन हमले वारी कोशिश जी मुज़म्मत। चिड़ ॾियारींदड़ क़दमनि ते अफ़सोस ऐं दुख जो इज़हार। दुनियनि खे सबर सां कम वठण जी अपील। शहबाज़ शरीफ़ चयो त मके ते हमले वारी किरियल कोशिश माफ़ करण जोगी नाहे। हरम जे तहफ़ुज़ लाइ पाकिस्तानी क़ौम सऊदी अरब सां कुलो कुल्हे में मिलाए बीठल आहे। असांजो ख़ितो तकरारनि जी घरी क़ीमत अदा करे रहियो आहे। दुरियूं सबर जो मुज़ाहिरो कनि ऐं वधीक छुताण खां पासो कनि। सीएन जूं सऊदी अरब ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं जारी। सऊदी अरब पारां फज़ाई हदनि में दाख़िल थींदड़ ड्रोन तबाह करण जी दावा। सऊदी फ़ौजी इतिहाद जो चवणु आहे त यमनी हुसैन जे ड्रोन खे मके जी फज़ाई हदनि में तबाह कयो वियो। हुसैन पारां मके ते हमले वारे इल्ज़ाम जी तरदीद। पाकिस्तान में दहशतगर्दी लाइ अफ़गान सरज़मीन इस्तेमालु थी रही आहे। टेरर कराए नेटवर्क पाकिस्तान में दहशतगर्दीअ लाइ सहूलियतूं फराहम करे रहियो आहे। घरू मामलनि बाबति मुल्क ते वज़ीर साबितियूं दुनिया खे ॾेखारे छॾियूं। तलाल चौधरी चयो आहे त ॻुझे ऑपरेशन दौरान आज़ाद कश्मीर वासी ज़िया नाले शख़्स खे गिरफ़्तार कयो, जंहिं वटि दहशतगर्दनि जी गठजोड़ जूं साबितियूं मिलियूं आहिनि। दहशतगर्दनि खे पढ़ाई क़ुवतूं मदद ॾेई रहियूं आहिनि। एक्शन कमेटी ते साबित बाद पाबंदी लॻाई।

0: ईरानी परडेही वजीर जी बीजिंग में चीनी हमन सब से मुलाकात बेतरफन लागापन समेत खत्े की तब्दील थींदड़ सूरत हाल से गाल बोल चीनी परडेही वजीर तो बीजिंग खत्े में चुकान न तो चाहे अमरीका ईरान इस्लामाबाद मुफामत तहत तय थियल मामलों से अमल कदे गाल शुरू कन तकरार कें भी दूर के मफाद में ना है। अमरीकी कांग्रेस ईरान जंग के खात्मे बाबत ठहराव टों भेरो भी मंजूर करे वरतो। ठहराव की हिमायत में 220 वोट पिया 204 मुखालफत में वोट कर सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 7 मेंबर्स भी ठहराव की हिमायत कई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003।

0: ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाय साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03005589
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109, 03000-3105-109।

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109, 03000-3105-109 हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे
3: मिल्क राइज ब्यूटी शो के साथ मैं हूं आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं GFM 94 मेहरापुर मिल्क राइज ब्यूटी शो और GFM 94 मेहरापुर के सुनने वाले तमाम सभी मौजिज लिसनर्स को अब चौहान की तरफ से वेलकम बलिकार खुशामदी जी एन वशात के और पखैर रागले

सबसे पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने भरपूर रिस्पांस दिया, हमें लाइव कॉलिंग के वसीले अपना फीडबैक भी दिया और हमारी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि अभी जितने मजीद और जहां जहां तक मेरा पैगाम जा रहा है, जहां जहां तक GFM 94 मैरापुर सुना जा रहा है, वहां वहां से हमें रिस्पांस आना चाहिए। हमारी प्रोडक्ट को आजमाना एक बार शर्त है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट की दावा है कि खूबसूरती जो नज़र आए, भरोसा जो दिल जीत ले, और हम दावा नहीं दलील देते हैं।

मिल्क राइस की प्रोडक्ट्स जिन जनरल स्टोर्स पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनमें से खुशी जनरल स्टोर मैरापुर, फैजान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान मुगल जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर, जावेद जनरल स्टोर मैरापुर और अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर।

और इसके अलावा अगर आपने प्रोडक्ट की किसी और स्टोर पे किसी और सिटी में लोकेलिटी में अवेलेबिलिटी करवानी है तो उसके लिए आपको एक कॉल करनी पड़ेगी, और कॉल आपको किसने करनी है, हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करनी पड़ेगी, और हमारी हेल्पलाइन नंबर है 0300 310 510 9।

मिल्क राइस जूं ये तमाम ज़बरदस्त ऐं ख़ूबसूरत प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल आहिनि अव्हां जे पंहिंजे शहर जे हर नंढे ऐं वॾे बल्कि नंढे न सभिनी वॾनि जनरल स्टोर ते ऐं ख़ूबसूरत सुठनि जनरल स्टोर ते अवेलेबल आहे। जंहिं मज़ा ख़ुशी जनरल स्टोर मैरापुर, फैज़ान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान मोगल जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज़ जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर, जावेद जनरल स्टोर मैरापुर ऐं अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर।

इन खां अलावा जेकॾहिं अवां कंहिं ॿिए जनरल स्टोर ते प्रोडक्ट जी अवेलेबिलिटी कराइणु चाहियो था त उन लाइ अव्हां खे कॉल करणी पवंदी। ऐं कॉल कंहिंखे कंदो? कॉल कंदो असांजे हेल्पलाइन नंबर ते। ऐं हेल्पलाइन नंबर आहे 0300 310 510 9। ऐं हिन ते कॉल करे अव्हां तमामु बेहद प्यारनि माण्हुनि सां ॻाल्हि कंदो।

0: जी दोस्तों, प्रोग्राम में अवां में एनर्जी आणण लाइ असां वटि आहे एनर्जी बूस्टर, मतिलब एनर्जी खे जेको वधाए छा थो थी सघे। मलिक ज़फ़र इक़बाल, एम सिद्दीक, मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट जी सॼी टीम ऐं अवां सभिनी जे हिन एनर्जी बूस्टर लाइ असीं प्ले कंदासीं तुफ़ैल संजराणी जी ख़ूबसूरत आवाज़ में सोना लगदा है अली वाला।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे।

0: की खूबसूरती पर ठहर जाए। और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105109, 03000-3105109।
1: लाल मारी साहब मौजूद है।

जी दोस्तों वेलकम बैक प्रोग्राम मिल्क राइस ब्यूटी शो सां गॾु आउं आहियां अभित चौहान ऐं अवां ॿुधी रहिया आहियो जी एफ एम 94 मेहराबपुर यकीनन ही खूबसूरत ट्रैक ॿुधी हवा में एनर्जी बूस्ट थी हूंदी ऐं हाणे अवां जो वारो ईंदो कॉलिंग जो त पोइ असांखे कॉल करण लाइ असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे एनर्जी बूस्ट हुअण जे बावजूद बि कॉलिंग नंबर मूंखे आहिस्ता ॿुधाइणो पवंदो छाकाणि त जीअं अवां जूं कॉल शामिल थी सघनि लेकिन अवां जी एनर्जी एतिरी बूस्ट थी चुकी आहे जो नंबर ॿुधाइण खां अॻु अवां जी कॉल अची रही आहे त पोइ हिकिड़ी कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, केरु अदा किथां खां? साईं नज़ीर अली जरवार साहब, वेलकम, भली कार, ख़ुशामदीद।

जी दोस्तों, नज़ीर साहब में एनर्जी बिल्कुल बूस्ट थे लोही, पर अनफॉर्चुनेटली कॉल डिसकनेक्ट थी वही। असां बीहर वेट कंदासीं अवां जी कॉल जो, ऐं असांजो कॉलिंग नंबर आहे

0: बिल्कुलु एनर्जी त बिल्कुलु बूस्ट आहे, पर हाणे कॉल अलाए छो डिस्कनेक्ट थी वई नंबर ॿुधाइण खां अॻु? वन सेकेंड, ॿीहर कॉल अची रही आहे, कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में. अस्सलामु अलैकुम, केरु प्यारा, किथां खां? हैलो, साईं मुंहिंजा. वालेकुम सलाम प्यारा, केरु किथां खां? अव्हांजो आवाज़ कुझु घटि पियो अचे. साईं, मां ॻोठ ज़मीराबाद में पासे सां थो ॻाल्हायां.
1: हैलो,
0: जी जी, आवाज़ अचे पियो अव्हांजो.
1: हैलो,
0: जीअं तव्हां आवाज़ अचे पियो.
1: सर, तव्हांखे
0: ॿुधूं था, पर अञा क्रीम कोन वरिती आहे.
1: कलाम को
0: ॿुधायो
1: सर.
0: कलाम ॿुधाईंदा, क्रीम कॾहिं था वठो इहो ॿुधायो. कलाम ॿुधण खां पोइ हलिया वेंदव. बिल्कुलु बिल्कुलु, ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे मूंखे अव्हां सां ॻाल्हि ॿोल करे. ऐं क्रीम को एक्स्ट्रा ओवर बर्डन नाहे अव्हां जे खीसे ते. जिते घर में ॿियूं प्रोडक्ट्स इस्तेमालु थी रहनि, उन जाइ ते असांजी प्रोडक्ट इस्तेमालु करे ॾिसो, अव्हां खे रिज़ल्ट मिलंदो. साबुण बि घर में इस्तेमालु थींदो हूंदो, को न को उन जाइ ते अव्हां खे मिल्क राइस ब्यूटी जेको सोप आहे उहो इस्तेमालु कयो, ऐं असांखे जेको आहे त दलील ॾियण जो मौक़ो ॾियो, त असांजी प्रोडक्ट अव्हां खे 3 ॾींहंनि में रिज़ल्ट ॾींदी. छा चवणु चाहींदो? को सलाम, को दुआ, को प्यार जो को पैगाम, को नियापो? सुठे वारो कलाम ॿुधायूं था. ठीकु आहे मुंहिंजा भाउ, प्रोग्राम ॿुधंदा रहो. वॾी महिरबानी. जी दोस्तो, अव्हां जूं मोहबतूं, मान, प्यार, चाह असां लाइ, ऐं कलाम बि ज़रूरु शामिलु कंदासीं प्रोग्राम में. असां कसीदो ऑलरेडी शामिलु करे चुका आहियूं, सुहिणा लॻंदा आहे अली वाला. उन खां पोइ असां को न को असां कोशिशि हूंदी आहे त सिंध जी मोहबत में, सिंध ते मबनी गीत हुजे, उन खां पोइ को ॿियो हुजे. तेसीं ताईं कॉल शामिलु कंदासीं. अस्सलामु अलैकुम, केरु अदा किथां खां?
1: अलाह
0: हलंदा रहंदा, ऐं जुदायूं ऐं विछोड़ा बि ज़िंदगीअ जो हिसो आहिनि. अलाह उन्हनि जी मग़फ़िरत अता फ़रमाए. असां उहांजे ॾुख में बराबर त न खणी चऊं त मतिलब शरीक आहियूं. असांखे बेहद अफ़सोस थियो.
1: जी साईं जी,
0: को सलाम दुआ कंहिं दोस्तनि खे ॾियण चाहींदो?
1: साईं जलाल जोगी जो कलाम ॿुधायो,
0: दुख वारो को हुजे.

0: Ciao. Ikada budayo.
1: Sankal kubda chikara to sajan kren tatika.
0: साइकिल को प्या छका
1: रात सजन करे दातिका ओ जो नानो सादिकली बुदी रहा है
0: जी
1: आई उने में मंताज अली जरवार मंजूर अली जरवार आई यासीन अली जरवार आई बशीर
0: सबनी के सलाम मुझे तरफा भी
1: वालेकुम
0: बड़ी मेहरबानी प्यारा प्रोग्राम बुद्दा रहो थैंक यू।

वॾी महिरबानी मोहबतूं, अवां रेगुलरली प्रोग्राम बि ॿुधो पिया, कॉलिंग बि कयो पिया, फीडबैक बि ॾियो पिया। हिकिड़ी कॉल बि शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। हलो, वालेकुम असलाम, केरु पहिरां किथां खां? रिज़वान अली ख़ासि कयल, कहिड़े ॻोठ खां? हलो, रिज़वान ख़ासि कयल साहब, कहिड़े ॻोठ खां ॻाल्हायो पिया? जी जी, हाणे अचे पियो? कहिड़े ॻोठ खां ॻाल्हायो पिया? ज़मीराबाद ॻोठ खां। बिल्कुलु बिल्कुलु, अदा मजबूर आहियूं, नेटवर्क जो प्रॉब्लम हूंदो। दुआऊं तव्हां भाइरनि जूं तव्हां ॿुधायो। प्रोडक्ट जे हवाले सां को फीडबैक ॾियण चाहींदो? वरिती आहे, इस्तेमालु कयो पिया, कहिड़ी पोज़ीशन आहे? सभिनी ते वेंदो, सभिनी खां हिकु हिकु वठंदो? हा, सभिनी खे नज़र राज़ी कयो। हा वाह साईं, वाह वाह, ईअं बि आहे, सभिनी खे राज़ी कयो। हा, ॿ टे संगत सां गॾु वञो तव्हां, हिकिड़े ते ॿिए ते ॿियो, वरी पोइ गॾिजी करे किथे समोसा चांहि पकौड़ा खाई करे कचहरी कयो। जंहिं बि जनरल स्टोर ते, जंहिं बि जनरल स्टोर ते वञो, मुंहिंजा सलाम लाज़मी ॾिजो। बिल्कुलु हलाईंदासीं, बिल्कुलु। बिल्कुलु बिल्कुलु, सभिनी जे नाम कंदासीं। वॾी महिरबानी, कुर्ब लख लाइक़। थैंक यू, अलाह हाफ़िज़।

0: ट्रैक वन खाग में मुझे दिल को चवी तो कॉल अवान हलंदी रहे हलो वा ट्रैक थे ट्रैक लाजमी बुधंदे प्रोग्राम में ट्रैक शामिल कदे सूहन प्रोग्राम की पर कॉल अवानी अस मानायती है कॉल मिस थी चुकी है जैसे बीहर को कॉल दोस्त कर चाहे तो जिन दोस्त हिं टोन किया नंबर बुधाई तो 0-300-93-19-600-67 कॉलर आन असा गुड शामिल अस्सलाम वालेकुम केरा दा किथा का
1: वली शहर रेंसराम थरी मीरवा बाबा
0: महबूब अली शहर थरी मीरवा का वेलकम भली कार प्यारा कड़ारन
1: जी महबूब अली शहर रहीं
0: जी जी महबूब अली शहर साहब वेलकम भली कार
1: थैंक यू ना लगा पूछा
0: A1 दों अमा बताओ पंजा
1: मालक जा कर्म लगा प्यान रही आज आने रातो थियो साई असा
0: केड़े साई असा
1: जफर साहब
0: वाह साई वाह
1: हां उन ते रही थरी मीरवा में हर नंदे वाले चैनल स्टोर दे मौजूद है माचो बाबा बस सुबह इंशाल्लाह अवल खैर
0: बाबा थरी मीरवा में अमा अग में पूछा कोन कई कह दुकान ता
1: केओ मोसे मुजो आद साहब सलाम हो जनो
0: सलाम देनो ना मुजा
1: सलाम
0: दिनव न मुजा
1: बिल्कुल रे बिल्कुल
0: हां त पो इनखे दिनव न जफर साहब के हाने जो को ना पजो जय

0: जनरल स्टोर ते वञो, उनखे भी मुंहिंजा सलाम ॾिजो।
1: वालेकुम सलाम भई, वॾा वॾा स्टोर आहिनि भई, त बसि इनशाला सुभाणे भई मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम ऐं मिल्क राइज सोप वठंदा।
0: सोप लाज़मी, हा बिल्कुलु। एकनी जेकॾहिं कंहिंखे दाणा आहिनि, मोहिड़ा आहिनि, त उन अदी भेण खे उनखे वठी ॾियो भाजाईअ खे, अगरि शादी शुदा आहियो त पोइ उहा इस्तेमालु कयो, इनशाला उहे दाग धबा दाणा बि ख़तमु थींदा। मूंखे बि झुमाए थो, पर हल्को हल्को लाइट ईअं सूफ़ी ईअं जीअं न हूंदा आहिनि रोमी टोपी वारा, उन में मूंखे बि ईअं ई थो झुमाए। छा हुअणु घुरिजे बैकग्राउंड में, छा हुअणु घुरिजे? इहो जॻहि रखंदो सरस, पर इहो असांजे कंहिं ॿिए दोस्त खे घटि वणियो, सो उन्हनि चयो त ख़ाली प्योरली बैकग्राउंड हुअणु घुरिजे, हुन में लफ़्ज़ न हुजनि, त पोइ असां वरी उन्हनि जे हुकुम जी तामील असांखे करणी पई। ठीकु आहे, कोशिशि कंदासीं, वरी ॻोल्हींदासीं बैकग्राउंड सुठे खे। मोलाई ॿुधायूं था, अॼु ई ॿी काल आहे, मोलाई लाइ था, मोलाई शामिल कंदासीं। पंहिंजे पैसनि सां? मां जो यार एतिरो जेकॾहिं विरिहायो था सॼे ॻोठ में वठी था ॾियो, ठरी एतिरो नंढो बि कोन्हे, तमामु वॾो आहे, सुठो आहे शहर, मुंहिंजा विज़िट थियल आहिनि, पंधु थियल आहिनि कंहिं प्राइवेट जॉब जे हवाले सां, काफ़ी जेको आहे सुठो ऐं वॾो आहे। जी जी, अच्छा अच्छा, हूअं तव्हांजो ॻोठु ठरीअ खां केतिरो परे आहे? मेरापुर खां डेफिनेटली अव्हांखे वेझी आहे, मां जो सॼे ॻोठ में विरिहायो त पोइ मुंहिंजे लाइ बि ॿ डबियूं खनि रखिजो भाउ। प्रोग्राम ॿुधंदा रहंदो, मोलाई अॼु लाज़मी शामिल कंदासीं प्रोग्राम में, ठीकु आहे पहिरां? थैंक यू, मोहबतूं, लव यू, लख लाइक।

0: जी दोस्तों, फरमाइश हूँ बे मुझे मथा तमाम वधिक बार रखियो वे है फरमाइशन जो भी पर कॉलिंग भी जो आ कंटिन्यूसली है पर हाँ थोड़ो अस ट्रैक दे वे ट्रैक है जो रजब फकीर की आवाज़ में तमाम खूबसूरत ट्रैक है अचो तो गजी इन ट्रैक के एंजॉय क्यों
1: पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और

0: वेलकम बैक मिल्क राइस ब्यूटी शो सां गॾु आहियां आबिद चौहान ऐं मां ॿुधी रहिया आहियो जी एफ एम 94 मेहराबपुर। और दोस्तो अॼु अव्हांजी कॉलिंग जी मोहबत जो सिलसिलो कंटिन्यू आहे, सो वधि खां वधि मुंहिंजी कोशिशि हूंदी त अव्हां जूं फोन कॉल्स वठजनि। सो असां सां गॾु लाइन ते कॉलर मौजूदु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां?
1: नालो
0: असांजी जेका प्रोडक्ट आहे, जेका कंपनी आहे, उहा आहे मिल्क राइस। उन में असांजो जेके प्रोडक्ट आहिनि, हिकड़ी आहे ब्यूटी क्रीम, ॿियो आहे ब्यूटी सोप, टियों आहे एक्नी क्रीम। हाणे जेकॾहिं क्रीम जेका आहे एक्नी, उहा दाणनि मोहिड़नि लाइ इस्तेमालु थींदी आहे, ऐं साबुण त घर में ज़रूरत हूंदी हूंदी आहे, ऐं क्रीम बि अदियूं मारियूं भेनरियूं लाज़मी इस्तेमालु कंदियूं आहिनि। पोइ तरीक़ो इहो आहे इस्तेमाल जो त राति जो सुम्हण खां अॻु में उहा क्रीम ब्यूटी आहे न, त पोइ उनखे निखार आणण लाइ चहिरे ते, त पोइ साबुण सां पहिरियों मिल्क राइस ब्यूटी सोप सां असांजी प्रोडक्ट जेका साबुण आहे उन सां मुंहुं धोई, पोइ राति जो क्रीम हणी करे सुम्ही पोइ सुबुह सां वरी साॻी साबुण सां धोई करे लाहे छॾियो। इहो तरीक़ेकार आहे, रुटीन आहे, ऐं साबुण पियो इस्तेमालु थींदो, फैमिली में ॿिया बि प्रोडक्ट इस्तेमालु कंदा हूंदो ॿिए कंहिंजो, सो साबुण हर घर जी ज़रूरत आहे, ऐं क्रीम बि मिल्क राइस ऐं जनरल स्टोर जिन तव्हांखे मिलंदी। साईं मूंसां गॾु आहियो न? हलो, हा, जिन जनरल स्टोर ते अव्हांखे मिलंदी उन्हनि मज़ा अव्हांजे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में ख़ुशी जनरल स्टोर मेहराबपुर, फैज़ान जनरल स्टोर मेहराबपुर, कामरान मुग़ल जनरल स्टोर मेहराबपुर, हफीज़ जनरल स्टोर मेहराबपुर, कोरी जनरल स्टोर मेहराबपुर, जावेद जनरल स्टोर मेहराबपुर, ऐं अलकरम जनरल स्टोर मेहराबपुर ते अवेलेबल आहे। हाणे इहे सभु जनरल स्टोर ऐं उन खां अलावा जेको आहे त इहे तमामु तर जेके आहिनि त प्रोडक्ट असांजे मिल्क राइस, यादि रखंदो, मिल्क राइस, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस लख तोरा न त सबक वांगुरु पढ़ायूं पिया असां अव्हांखे। जी भाउ, बिल्कुलु मिली वेंदी, अदरवाइज़ अव्हांखे असांजी हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करणी पवंदी भाउ। नंबर ॿुधायूं था पिया, असांजो हेल्पलाइन जो नंबर आहे 0300 310 510 9। हाणे इहो प्रोग्राम में बार बार हलंदो रहंदो आहे, रिपीट थींदो आहे, हिन ते अव्हां कॉल करे ॻाल्हि कंदो मलिक ज़फर इक़बाल साहब सां। बस पोइ नंबर ॿीहर थो ॿुधायो, 0300 310 510 9, हिन ते ॻाल्हि कंदो मलिक ज़फर इक़बाल ऐं एम सिद्दीक साहब सां। हा बिल्कुलु बिल्कुलु, हुसैन बख़्श साईं वियो दुकान ते साईं जे हिते, जेको आहे त ज़फर इक़बाल साहिब जे हिते जनरल स्टोर ते हुते मुलाक़ात थी। अवां अलाए कॾहिं पिया वञो, अवां बि वञो त पोइ सलाम ज़रूरु ॾिजो मुंहिंजा। बिल्कुलु बिल्कुलु, वॾी महिरबानी, मोहबत। ॿियो छा चवणु चाहींदो?
1: थैंक
0: यू साईं, ओके, अलाह हाफ़िज़।

जी असां सां गॾु कॉलर मौजूदु आहिनि, लाइन ते कॉल अटेंड कंदासीं। कॉल ड्रॉप थी वई। जी दोस्तों कॉलर आहिनि असां सां गॾु। अस्सलाम वालेकुम। केर पैरा किथां खां? मुकेश साईं वेलकम, भली कार ख़ुश आमदीद। बंदि दुआऊं पहिरां, अवां ॿुधायो कीअं आहियो? एहसान रब पाक जा। प्रोग्राम करे छा ॿुधो पिया? यकीन तव्हांखे ॼाण हूंदी त असांजो प्रोग्राम कहिड़ी प्रोडक्ट मुतालिक़ आहे।

0: आजा या फैमिली यूनिट या एनजीओ का प्रोजेक्ट देके ना आया ने नाला चंगा ने यार
1: केड़ा मिल्क राइस
0: हरीना हरीना थी वही झलक थी
1: हाँ ये भी इस्तेमाल करे डिठा हूँ अवा मिल्क राइस इस्तेमाल करे दिसो असान जी प्रोडक्ट जी दावा है तो चुनियन में रिजल्ट अवा के मिल दो खुशी दे वन्यो तो मुझा सलाम लाजमी दे जोस मलिक मलिक जफर साहब के जी जी दोस्तन के याद कियो
0: रोशन कुमार मारवाड़ी
1: जी
0: प्रेम कुमार मारवाड़ी
1: जी
0: सुनील कुमार मारवाड़ी जम्मू मोलाई
1: हाँ
0: सुरेश कुमार
1: हाँ
0: और सर खतावला न्याजी जो असान के गुड़ों को सॉन्ग को थोड़ी ट्रैक बताई दो तो फर्स्ट क्लास दिए
1: बस प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोग्राम छा कंदो
0: ओ जो ता के उते प्रोडक्ट का सावती दा जे खुशी जर्नल स्टोर तो ता जा सलाम दी दा जे आज आफिस जवान साहब जा
1: लख लायक मोहब्बत हूं
0: आ असा थोड़ो बड़ी ट्रैक न्याजी साहब जो जे बतायो आ तो मौसम बार लगी पैसा
1: वाह वाह वाह वाह हां मुंदे मौसम आज जको आ त असा वट भी ते बेहतर आए मुझे तरफा भी अवां जी सजी संगत के सलाम नमस्ते हक मौजूद सखी पीर मौला अली मदद कुर्ब प्यारा प्रोग्राम बुद्धा रहो अवां जी इंशाल्लाह फरमाइश पूरी कंदा से थैंक यू वरी मेहरबानी कुर्ब लख लाइक सो दोस्तों कॉलिंग अवां जो अचन भी मोहब्बतूं आहिन अवां जो असां ते फरमाइशूं बि आहिनि ज़िमेदारियूं उहो फरमाइश पूरी कंदासीं ॿ टे दोस्त मुसलसिल जेको आहे त मौलाई जे गीत जी फरमाइश पिया कनि त पोइ मौलाई जो असां गीत बि शामिलु कंदासीं प्रोग्राम में ऐं उनखां अलावा हींअर सुरेश साहब जेको आहे त कॉल कई उन्हनि जी फरमाइश बि पूरी कंदासीं अचो त गॾिजी करे मुमताज़ मौलाई ऐं सिंध जी नाले वारी फनकारा सनम मारवीअ जी ख़ूबसूरत आवाज़ में गीत ॿुधूं था तेरे नां दी तस्बीह पढ़ सौंदा

0: जी दोस्तों, तमाम मोहब्बतूं अवां जो रिस्पांस भरपूर मिली रहियो आहे, पर हींअर मां हाणे जेको आहे न हांव ते पथर रखी करे ही आख़िरी कॉल थो अटेंड कयां, जो की प्रोग्राम जी लख लाइक़ कुर्ब ऐं टाइम थोरो बचियो आहे, ट्रैक बि हलाईंदासीं ऐं वाइंड अप बि कंदासीं, कॉलर असां सां गॾु आहे। अस्सलाम वालेकुम, केर प्यारा किथां खां? साईं मुंहिंजा प्यारा, अवां जो आवाज़ कुझु घटि पियो अचे। अरे वाह वाह वाह वाह, हुसैन बख साईं, अवां जी आख़िरी कॉल, लकी आहियां मां, लकी आहियां अवां न लकी चवंदा आहिनि दोस्त कुझु, पर मां थो चवां मां लकी आहियां अवां जहिड़े प्यारे माण्हू जी।
1: बिल्कुलु सर,
0: महिरबानी रहियूं आहिनि असां ते, इनायतूं रहियूं आहिनि ऐं सभु दोस्त रिस्पॉन्स ॾेई रहिया आहिनि। अव्हां जी सॼी नवाबी संगत खे मुंहिंजे तरफ़ां एडवांस में सलाम, ऐं उन ग्रुप में असांखे बि शामिल कयो न प्यारा, नवाबी संगत में। चवण था कीअं, चवण था कीअं, ग्रुप में एड कयो न असांखे पाण था। ठीकु आहे, अञा अवां मुंहिंजी शायदि ॻाल्हि कुझु घटि सम्झी, पर ठीकु आहे, ऐं हुन ते ॻाल्हि ॿोल वरी करे वठंदासीं, अवां असांजे ॿिए प्रोग्राम में बि कॉल कंदा, कचहरी थी वेंदी। सलाम दोस्तनि जा कुझु नाम खणणु चाहियो, आख़िरी ॿ टे मिंट बचिया आहिनि। कहिड़े जो हुनजो, हिन जो माई त मुंहिंजी मूंखे छॾे हली वेंदी। जेकॾहिं सॼो ॾींहुं मां रेडियो ते हूंदुमि, हिते सते खां नाए ताईं, वरी हुतां नाए खां यारहें ताईं, पोइ बाक़ी घर मां बचड़नि खे टाइम किथे ॾेई सघंदुमि? किथे साईं, हुन में ॿियो बि रोज़ी आहे न, को ड्यूटी आहे, को कमु कार आहे सुबुह सां। लख थोरा, लख थोरा मोहबतूं पहिरां, लख थोरा, लख थोरा, ही टाइम शॉर्ट बचियो आहे, मुंहिंजा अवां जी सॼी संगत खे सलाम, पोइ वरी पोइ ॻाल्हि ॿोल पाण कंदासीं, कुर्ब, थैंक यू, लव यू सर, थैंक यू, कुर्ब, लख लाइक। क्या बात आहे, ज़बरदस्त ऐं ख़ूबसूरत जेको आहे लास्ट में असांजी कॉल शामिल थी वई, ऐं हींअर असां जेको आहे त वाइंड अप कंदासीं, ऐं इन सां गॾु जेको आहे त पंहिंजे मेज़बान आबिद चौहान खे इजाज़त ॾींदा। सिन सलामत, साथ सलामत, अलाह निगेबान, ऐं अवां ई ट्रैक इंजॉय कंदा।
2: मेरे दिल

0: फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां दिफाई ऐं अहम इंफ्रास्ट्रक्चर जे शोबनि में ख़िदमतूं फराहम कंदड़ अमरीकी कंपनी जे वफ़द जी मुलाक़ात, गॾियल दिलचस्पी जे मामलनि ऐं दिफ़ाई टेक्नोलॉजी जे तब्दील थींदड़ रुझाननि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि, दिफ़ाई सामान जी ख़रीदारी ऐं पैदावार वधाइण जे शोबनि में बि सहकार जे इम्काननि ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। गॾियल दिलचस्पी जे शोबनि में सहकार ऐं राब्तनि खे वधीक हथी ॾियण में दिलचस्पी जो इज़हार कयो वियो। आसिम मुनीर जो क़ौमी सलामती ऐं मुल्की इस्तेहकाम खे मज़बूत बणाइण में टेक्निकी जिदत जी अहमियत ते ज़ोर भरींदे चयो त जदीद टेक्नोलॉजी ऐं जिदत क़ौमी सलामती तौरु इस्तेहकाम लाइ अहम आहे।
1: पाकिस्तान में दहशतगर्दीअ लाइ अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल थी रही आहे। टेरर कराए नेटवर्क पाकिस्तान में दहशतगर्दीअ लाइ सहूलियतूं फराहम करे रहियो आहे। दरू मामलनि बाबति ममलकती वज़ीर साबितियूं दुनिया खे ॾेखारे छॾियूं। इतलाल चौधरी चयो आहे त गुजे ऑपरेशन दौरान आज़ाद कश्मीर वासी ज़िया नाले शख़्स खे गिरफ़्तार कयो, जंहिं वटि दहशतगर्दनि जी गठ जोड़ जूं साबितियूं मिलियूं आहिनि। दहशतगर्दनि खे परॾेही क़ुवतूं मदद ॾेई रहियूं आहिनि। एक्शन कमेटी ते साबितियुनि बाबति पाबंदी लॻाई।
0: ईरानी परदेजिंग में चीनी हमनसब सां मुलाक़ात, बेतरफ़न लाॻापन समेत खिते जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। चीनी परदेही वज़ीर चयो त बीजिंग खिते में वधीक छिकताण नथो चाहे। अमरीका ऐं ईरान इस्लामाबाद मफ़ाहमत तहत तय थियल मामलनि ते अमल कंदे ॻाल्हियूं शुरू कनि। तकरार कंहिं बि धुर जे मफ़ाद में नाहे।
1: अमरीकी कांग्रेस ईरान जंग जे ख़ात्मे बाबति ठहराउ टियों भेरो बि मंज़ूर करे वरितो। ठहराउ जी हिमायत में 220 वोट पिया, 204 मुखालफ़त में वोट कयो। सदर ट्रंप जी रिपब्लिकन पार्टी जे 7 मेंबर्स बि ठहराउ जी हिमायत कई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस चयो आहे त ईरान जंग जल्द नई मरहले में दाख़िल थी वेंदी। ईरान जंग जो पहिरियों मरहलो ईरानी एटमी प्रोग्राम ऐं फ़ौज जी तबाही हो, जेको मुकमल करे छॾियो आहे। ॿियो मरहलो ईरान खे बहाली खां रोकड़ वारो आहे, जंहिं ते अमल कयो वेंदो।

0: वज़ीर आज़म फ्यूल सब्सिडी ते अमल लाइ इंतज़ामिया ऐं पेट्रोल पंप्स जे अमले ते ॿधल सहूलत डेस्क क़ाइमु करण जी हिदायत करे छॾी। वज़ीर आज़म जो चवणु हो त सहूलत डेस्क ते माण्हू फ्यूल स्कीम जे मुस्तहक़ शहरनि जी रहनुमाई कनि। अवाम खे रजिस्ट्रेशन ऐं ॿियनि ज़रूरी मरहलनि में हर मुमकिन रहनुमाई फराहम कई वञे। इजलास में वज़ीर आज़म खे आगाही ॾिनी वई त आज़ाद कश्मीर ऐं गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क में स्कीम शुरू थी चुकी आहे। मोटरसाइकिल, रक्षा ऐं 800 CC ताईं जे गाॾियुनि जे मालिकनि खे सब्सिडी ॾिनी पई वञे। स्कीम मुल्क गीर सतह ते लागू करण लाइ सूबाई हुकूमतूं सहकार करे रहियूं आहिनि।
1: सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई बानी जी अस्पताल मुंतकली वारे केस जी बुधणी। आईनी अदालत जे हुकुम ते अटॉर्नी जनरल खां मुआवनत तलब। जस्टिस शाहिद वहीद रिमार्क्स ॾींदे चयो त आईन जी तशरी खां सवाइ समूरा मामला सुप्रीम कोर्ट वटि आहिनि। जेको ऑर्डर आईनी अदालत कयो आहे, छा उहो असां ते लागू थिए थो? आईनी अदालत में सुप्रीम कोर्ट जा इख़्तियार आईन में वाज़े आहिनि। अडियाला जेल इंतज़ामिया खे अॼु ज़ाती हैसियत में तलब कयो हो। आफिसरनि मां को बि पेश नाहे थियो, छा जेल सुप्रिटेंडेंट जा वारंट जारी कयूं?
0: वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि पिम्स बाबति इजलास। 3 महीननि अंदरि पिम्स खे आलमी मयार जो बणाए सुधारा आणण जो हुकुम। फायर सेफ्टी निज़ाम बाबति PKLI खां मदद वठण जी हिदायत। शहबाज शरीफ जो चवणु हो त जांच कमेटीअ जी सिफारिश ते 3 महीननि अंदरि अमल करे अस्पताल खे आलमी मयार मूजिबि बहितर बणायो वञे।
1: क़ौमी असेंबली या सेनेट में नवनि सूबनि बाबति रिथ मंज़ूर थियण ते सिंध असेंबली में बीहर ठहराउ मंज़ूर करण जो ऐलान। लाड़काणे में पीपल्स पार्टी जो सिंध धरती माउ आहे जे उनवान हेठि सेमिनार। सिंध ख़िलाफ़ थींदड़ समूरियूं साज़िशूं रद्द। सेमिनार खे ख़िताब कंदे पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार कोड़े चयो त
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: कालम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
3: हाँ नहीं अचो, मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर। एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे

सर्टिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आरई 03073592120।

प्रोग्राम दिल जी ॻाल्हि ऐं जीए एफएम नेटवर्क जे सभिनी मानवारनि ॿुधंदड़नि पिरी प्यारनि दिलरुबा दिलबर दोस्तनि खे वेलकम भलीकार ख़ुशामदीद।

सितारन खां परे सुहणी अखिन में थी तरे सुहणी सितारन खां परे सुहणी अखिन में थी तरे सुहणी मेहर ते माठ जी मौसम मेहर ते माठ जी मौसम अजायो थी मरे सुहणी।

सितारनि खां परे सुहिणी अखियुनि में थी तरे सुहिणी, मेहर ते माठ जी मौसम अजायो थी मरे सुहिणी। लॻी वई लूंअ सा हड़ सां, लॻी वई लूंअ सा हड़ सां, ॾमन खां छो डरे सुहिणी। सितारनि खां परे सुहिणी अखियुनि में थी तरे सुहिणी।

सिंधुअ जी सीर खाली खे, सिंधुअ जी सीर खाली खे अखियन सां थी भरे सुहिणी, सितारनि खां परे सुहिणी, अखियुनि में थी तरे सुहिणी।

किनारा हाणे सोचन था, किनारा हाणे सोचन था, किनारा वही करे सुहिणी, सितारन खां परे सुहिणी, अखियुनि में थी तरे सुहिणी, मेहर ते माठ जी मौसम अजायो थी मरे सुहिणी।

अचो त गॾिजी हिन ख़ूबसूरत शहर सां गॾु हिकु ख़ूबसूरत गीत ॿुधूं, उन खां पोइ वापसि फिरंदासीं।

0: शाह लतीफ का सिंध की पहचान की आवाज।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: जा पीओ रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया, भला इहो त बुध अई वठी अच।
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
4: हां भाग भरी चंगो थो लगे, मा हाणे ही थो वठी अचा।
5: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर ए जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करियो।
6: हर बार जा नंदड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन ता, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके तो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
7: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
8: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
9: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ए फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-191।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा।
5: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 03013992836।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: जी जान तारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

प्यार जा वया उडामी पखी, प्यार जा वया उडामी पखी, सुन्यो सर्रा वसो हाने। बाह में साह पियो थो सड़े, बाह में साह थो पियो सड़े, अंदर जर्रा वसो हाने, दिल थर्रा वसो हाने, खाली घर्रा वसो हाने। वेलकम बैक प्रोग्राम दिल जी गाल सा करा हूं है आबिद चौहान आया मां बुधी रहा हो GFM नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम केयर साईं किथा का हेलो हेलो

मदद खायूं कॉल कनेक्ट कोन थी सघी तेसी ताईं असां दोस्तनि जी जेका फरमाइश हुई उनखे प्ले कंदासीं ऐं उमेद त उहो गीत उहो ई हुजे छाकाणि त ॿोल इहे साॻिया ऐं आम कॉमन आहिनि माण्हू मतिलब जो खोड़ सारनि शाइरनि फ़नकारनि ज़िक्र कयो आहे ऐं असां पंहिंजनि ॻाल्हियुनि में बि ज़िक्र कंदा आहियूं त माण्हू मतिलब जा आहिनि पर मूं अॻु में बि अर्ज़ु कयो त हर माण्हू ॿिए खे मतिलब परस चवे थो ऐं पंहिंजे अंदर में पंहिंजी जातीअ में अंदर में जाती कोन थो पियो पाए सो असांखे पंहिंजे अंदर में बि जाती पाइणी पवंदी त किथे उहे असां त न आहियूं माण्हू जेके हिक ॿिए खे असां मतिलब परस चऊं था। उमेद त को बि अहिड़ो न हूंदो जेको रुगो मतिलब जे तलाश में हुजे, पर हाणे कंहिंखे मयार आहे, कंहिंजे लाइ इहे ॿोल आहिनि ऐं डेडिकेशन वरी असांजी टीम खे थियल आहे, असां मां केरु मतिलबु ई आहे। सो हर को पाण ॾांहुं सम्झे। अचो त गॾिजी हीअ ख़ूबसूरत आवाज़, ख़ूबसूरत गीत फौज़िया सुमरो जी आवाज़ में ॿुधूं।

जी दोस्तों, हर माण्हूअ जी इहा ई ॻाल्हि हूंदी आहे त क़दुरु करण वारा माण्हू घटि रहिया आहिनि। शायदि असां खां बि इहे ग़लतियूं थी रहियूं हुजनि। अचो त गॾिजी करे पंहिंजनि जो क़दुरु कयूं ऐं ही कॉल अटेंड कयूं। अस्सलाम वालेकुम, केरु साईं, किथां खां? हलो, हलो,

मूंखे बेहद दुख थींदो आहे, यकीन कयो। छाकाणि त अव्हां जॾहिं मयार ॾींदा हो त पोइ मां ॾाढो शर्मसार महसूसु थींदो आहे त कॉल अटेंड छो न थी सघी। मुंहिंजी वधि खां वधि कोशिशि हूंदी आहे अव्हां सां ॻाल्हि ॿोल कजे, छाकाणि त प्रोग्राम जो नाम दिलि जी ॻाल्हि आहे, त पोइ दिलि जूं ॻाल्हियूं अव्हां सॼणनि सां सलझनि। अॼु मां काफ़ी अव्हां खे शेरो शायरी ॿुधाई ऐं ॿुधाईंदो हलां त उहे जेके अॼु मूं अव्हां खे ग़ज़ल गीत शेर ॿुधाया नसर में या नज़म में, उहे असांजे प्यारे प्रीं जेको आहे त एडवोकेट इमदाद सोलंगी साहिब जी शायरी आहे, प्रोग्राम में शामिलु कई। सो दिलि जी ॻाल्हि जो प्रोग्राम जेको पैटर्न आहे उहो मुंहिंजे सोशल मीडिया जे ऐप ते बि अवेलेबल आहे, ऐं जेकॾहिं अव्हां लाइव किथे ॿुधणु चाहियो था त असांजी लिंक बि अवेलेबल हूंदी आहे। आफ्टर रिकॉर्डिंग कुझु शॉर्ट्स, कुझु नंढा हल्का फुल्का कुझु प्रोग्राम या शॉर्ट ड्यूरेशन वारा अव्हां जूं कयल ॻाल्हियूं, उहे मां सांडे करे पंहिंजे पेज ते रखंदो आहियां, जेको दिलि जी ॻाल्हि जे नाले सां आहे फेसबुक ते। इंस्टा ते पिण अव्हां जो प्यार असांखे मिलंदो ऐं उते बि उहे शयूं आहिनि। सो हींअर मजबूर थी करे असीं वरी चऊं था त वक़्तु ब्रेक जो थियो आहे, ऐं इहा ब्रेक जेका आहे त बेसब्री सां अव्हां ऐं असांजे विच में इंतज़ार जूं घड़ियूं बि वधाईंदी आहे। सो तंहिं करे थोरी घणी ब्रेक हुजे पर वॾियूं विथियूं न हुअणु घुरिजनि। वरंदासीं न्यूज़ ब्रेक खां पोइ, ॿुधंदा रहो GFM नेटवर्क।

मक्का मुआहिदे में शामिल कंहिं बि मुल्क ते हमिलो थियो त टई मुल्क गॾियल फ़ैसिलो कंदा। मक्का मुआहिदो जारहाणो न पर दिफ़ाई रोयत जो आहे। दिफ़ाई वाइदनि जा ऑपरेशनल तफ़सील अवामी सतह ते नाहिनि ॿुधाया वेंदा। डी जी आई एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ़ चौधरी जो अरब टीवी खे इंटरव्यू। डी जी आई एस पी आर चयो आहे त कंहिं बि मुल्क ख़िलाफ़ असांजा इरादा जारहाणा न आहिनि। दिफ़ाई सलाहियतनि ते भरोसो आहे। दिफ़ा करण सां गॾु सज़ा ॾियण जी बि सघ रखूं था। अफ़गानिस्तान बाबति बि मौक़िफ़ वाज़े आहे। अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमालु न थियणु घुर्जे। भारत पंहिंजी फ़ौजी ताक़त में इज़ाफ़े लाइ घणा वसीला ख़र्च करे पियो। पाकिस्तान जी दिफ़ाई सलाहियतनि जो मक़सदु सिर्फ़ मुल्की दिफ़ा आहे।

मके ते हमले वारी किरियल कोशिश माफ करण जोगी ना है। हरम जी तहफ़ुज़ लाइ पाकिस्तानी कौम सऊदी अरब सा कुलो कोले में मिलाए बीठल है। वजीर आजम जो हुसैन के हमले ते सख्त रद्द अमल, शहबाज शरीफ चिड़ डियारींदड़ कदम ते अफसोस जो इजहार करते तो मके ते हमले वारी किरियल कोशिश कें भी सूरत में माफी जोगी ना है। असो खितो तकरारों की गरी कीमत अदा कर रो है, दुरन सब्र जो मुजाहरों कन और चिकताण का पासो कन।

यमन जे हुसैन मक्का मुकरमा जी हवाई हदन में ड्रोन माड़े रेड लाइन क्रॉस करे छदी। सऊदी पारा ड्रोन के हवा में ही तबाह करण जी दावा। सऊदी फौजी इतिहाद जो चवण आए तो यमनी हुसैन जे ड्रोन के मक्का जी फजाई हदन में दाखिल थियण का अग तबाह कियो वियो। मुकदस हंध असां जी रेड लाइन आहिनि। हुसैन के इन्हीं हरकत जो इंतहाई सख्त जवाब डिनो वेंदो। हुसैन पारा मक्के ते ड्रोन हमले वारे इल्ज़ाम के रद्द करे छॾियो। सूबे मारब जे हवाई हदन में सऊदी जो F-15 जहाज तबाह करण जी भी दावा।

0: उसन अमरीकी
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।